ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

0: जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 आई तौकीर अहमद 0306-1623-793
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-800।
1: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम। अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

अमरीका जो रेडार ऐं ईरान जो रेडार ऐं ड्रोन ज़खीरो करण ते फिज़ाई हमिलो अमरीकी फ़ौज चवण आहे त कमर्शियल जहाज़ ते हमिले जे जवाब में ईरान ते फिज़ाई हमिलो कयो वियो। ईरान गुज़िरियल ॾींहुं अबु हॉर्मुज़ में गुज़रंदड़ अमरीका जे कमर्शियल जहाज़ खे निशानो बणायो हो। ईरानी ड्रोन स्टोरेज ऐं सामूंडी रेडार हंधनि खे निशानो बणायो वियो। अमरीकी नायब सदर जे डेविन चयो आहे तशद जो जवाब तशद सां ॾिनो वेंदो। ईरान खे मफ़ामती यादाश नामे ते अमल दरामद जे ख़िलाफ़ आहिनि त सिधो राब्तो करे सघे थो। पासवान इनकलाब पारां अमरीका हमिलो नाकाम बणाइण जी दावा। पासवान इनकलाब जो चवण आहे त अमरीका जो सख़्त जज़्बी ते कयल हमिलो नाकाम बणाए छॾियो आहे। जवाब में अमरीकी फ़ौज ठिकाणनि खे निशानो बणायो वियो आहे। अमरीकी ॿीहर हमिलो कयो वियो त हुन खां बि वधीक सख़्त जवाब ॾिनो वेंदो। अमरीकी सदर ट्रंप कुझु कलाक अॻु ईरान मथां जंगबंदी मुआदे जी भञकड़ी जो इल्ज़ाम लॻाईंदे सख़्त हमलनि जी धमकी ॾिनी हुई। डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान अपने हुर्मस मां गुज़रंदड़ जहाज़नि ते चयन ड्रोन ज़रिए हमला कया। हिकु ड्रोन हिकु सामूंडी जहाज़ जे मथे हिसे सां टकराइजी वियो। टे ड्रोन किराए तबाह कया विया। अहिड़ो अमल जंगबंदी मुआदे जी भञकड़ी ऐं बेवकूफ़ी आहे। असां वटि दुनिया जी ताक़तवर फ़ौज आहे। असां ईरानी क़यादत ख़तम करे छॾी। जनरल सुलेमानी खे बि मारे छॾियो। ईरान जो फिज़ाई ऐं सामूंडी दिफ़ा बि ख़तम करे छॾियो आहे। बीटू जहाज़नि ईरान जे एटमी दर्ज बि ख़तम करे छॾी। ईरान खे कंहिं सूरत में एटमी हथियार ठाहिण न ॾींदासीं। लबनान इसराइल ऐं अमरीका अमन मुआहिदे जी फ्रेमवर्क ते सहियूं करे छॾियूं। अमरीकी परडेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त त्रिधुरी अमन मुआहिदे जे फ्रेमवर्क जे बुनियाद ते अॻिते वधाईंदासीं। हिन फ्रेमवर्क जा मस्बत नतीजा निकरंदा। लबनान अमन मुआहिदे लाइ असांखे अञा बि घणो कुझु करणो आहे। फ्रेमवर्क मुआहिदो लबनान जी ख़ुदमुख़्तियारी खे वाज़े करे थो। मुआहिदो हिज़बुल्ला खे हथियारनि खां पाक करण ऐं हुन जे बुनियादी ढांचे खे ख़तम करण लाइ तरीक़ेकार फराहम कंदो। मुआहिदे तहत इसराइल पंहिंजे शहरनि खे पेशींदड़ ख़तरनि जे ख़ात्मे बाद पंहिंजे सरहदनि ते वापसि वञी सघंदो।

ईरान जे पहिरीं नाकाबंदी दौरान अमरीकी फ़ौज पारां तेवील में वरितल 22 ईरानी मुहाणा पाकिस्तान पहुची विया। नायब वज़ीर आज़म इसाक़दार तस्दीक कंदे चयो आहे त 22 ईरानी मुहाणा कराची पहुतल आहिनि। संदनि ॾे वापसी लाइ ईरानी अफ़सरनि सां राब्ते में आहियूं। मुहाणनि जी बाहिफ़ाज़त वापसी लाइ अमरीका ईरान सां लाॻीतो राब्ते में हुआसीं। हीअ अमरीकी तेवील मां वापसि करायल ईरानी मुहाणनि जो चोथों ग्रुप आहे।

अमरीका ईरान जंग का पे यूएई ईरान जो पेरों भेरो आला सतह बाज़ाबता राबतो बिन्हीं मुल्कन विच में बेड़ी सर्विस में बहाल थी वही ईरानी पड़े वजीर अब्बास राखी यूएई जो हम सब विच में राबते दौरान खिते में थीनर तब्दील थे तफसीली गाल बोल कही शेख अब्दुल्ला बिन जैद ईरान अमरीका माहदे ते मुकम्मल अमल दरामद ते जोर भरियो।

ऐं हुकूमत आलमी मार्केट में थी लॻनि मिलाद जो फ़ाइदो आवाम खे न ॾिनो। पेट्रोल ऐं डीजल जा साॻिया अघ बरक़रार। पेट्रोलियम डिवीज़न नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। पेट्रोल जो फी लीटर अघु 299 रुपया 50 पैसा ऐं डीजल जो फी लीटर अघु 311 रुपया 47 पैसा बरक़रार रहंदो। गैस लेट फी लीटर 6 रुपया 85 पैसा सस्तो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-33-8556-9।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर राबते जे लाइ 0302018-00003।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहराबपुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहराबपुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेहराबपुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहराबपुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कयल रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई

0: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ
1: 0300 हालाणी होलसेल डिपो अनेम टू बी ट्रस्टेड सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि। हाणे ई अचो महिरान आयरन स्टोर नज़ बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी। राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03-220-322-0422 ऐं 02-424-3721।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीए मीरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
4: ऑफिस जीए मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 03013992836।
6: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज जो बिन हदन थे ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द मारजी पाया। ISPR मूजिब खारान ए मस्तोंग में 25 और 26 जून से ऑपरेशन किया वो। खारान में ऑपरेशन दौरान 3 दहशतगर्द ए मस्तोंग में 5 भारतीय हामी दहशतगर्द मारजी पाया। मारजी पियल दहशतगर्द शहर ने कानून डॉक्टर इदारन थे हमले में मुलिस हुआ। अमेरिका जो ईरान की रेडार ए ड्रोन जखीरो करण हंधन से फिजाई हमलो। अमरीकी फौज चवण है कमर्शियल जहाज के हमले के जवाब में ईरान से फजाई हमलो किया वो। ईरानी ड्रोन स्टोरेज ए सामूरी रेडार्स के निशानो बनाया वो। अमरीकी नायब सदर जे डिवेंस चवाद जवाब तशद सानो वो। ईरान के मफामदी यादाश्त नामे अमल दरामद के खिलाफ आन सीधो राबो कर सके तो। ईरान गुजरियल डी आमने हुरमल में गुजरंदड़ अमरीका के कमर्शियल जहाज के निशानो बनाया हो। पासरान इनकलाब पारा अमरीकी हमलो नाकाम बनाने की दावा। पासरान इनकलाब अमरीका जो सुरख जज्जी कल हमलो नाकाम बनाया वो है। जवाब में अमरीकी फौज ठिकाने के निशानो बनाया। अमरीका बीहर हमलो कर तो सख्त जवाब दिनो वो। लबनान इसराइल ए अमरीका अमन मुहिदे की फ्रेमवर्क से सयू कर छ्यू। अमरीकी परे वजीर मार्को रोबियो है रधुरी अमन मुहिदे के फ्रेमवर्क के बुनियाद के अगते वधाईंदासी। इन फ्रेमवर्क जा मस्बत नतीजा निकरंदा। लबनान अमन मुहिदे लाइ असांखे अञा घणो कुछ करणो आहे। फ्रेमवर्क मुहिदो लबनान की खुदमुख्तियारी के वाज़े करे थो। मुहिदो हिज़्बुल्लाह के हथियारन का पाक करण ए बुनियादी ढांचे के खत्म करण लाइ तरीक़ेकार फराहम कंदो। मुरीद शाख में मुड़स गलो कपे ज़ाल के कतल कर छो। जवाबदार मुड़स शौकत पैं घरवारी आयशा जो गलो कपे फरार थी वो। सन वेझो इंडस हाईवे से नामालूम शख्स जो लाश है। इतलात पुलिस लाश अस्पताल मुंतकिल किया। सुणप न थी सकी। छोल में शाहूवा के पुछड़ी में पानी न पहुंचने खिलाफ आबाद करण जो एहतजाज। आबाद करण जो सांगड़ हैदराबाद रोड से धरणो। पुछड़ तई पानी पहुंचाने जो मुतालबो।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद 3 रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-003-8556-9।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर। राबते जे लाइ 0320180003।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आहिं।
4: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़ बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 0242460100।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक के सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चूप पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

पाकिस्तान पंहिंजी सरज़मीन ते हर क़ीमत ते दहशतगर्दी खे ख़तम कंदो। असांजो पाड़ेसरी शिकस्त बाद प्रॉक्सीज़ जो सहारो वठी रहियो आहे। पाक फ़ौज दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे। कराची में पाक पहिरें अॼु पासिंग आउट परेड खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तान जी कोशिशुनि सां अमरीका ऐं ईरान में इस्लामाबाद मफ़ामत ते सयूं थियूं। खिते में अमन जे क़याम लाइ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जूं कोशिशूं बि साराह जोगियूं हुयूं। ईरानी सदर मसूद पशान पारां पाकिस्तान जो दौरो इस्लामाबाद जे अहमु किरदार जो एतिराफ़ हो। खिते में थींदड़ वॾनि तब्दीलियुनि जो असर बि जल्द ज़ाहिर थींदा। पाकिस्तान दुनिया में अमन जो अलमबरदार तौर उभरियो आहे।

अमरीकी नायब सदर जी डिवेंस चाहे जो जवाब तशद जरिए डण की धमकी जो डिफेंस जंगबंदी मुआदे से ईरान के सयूं कर बाद इज्जत दिनी है ईरान के मफामती मुआदे के खिलाफ आन तो सीधी रीत बुधा सन तशद जो मुकाबलो तशद जरिए ही वो।

सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां चइनि ॼणनि जा लाश त हिकु सुञाणप न थी। दादू में खुदाबाद लग मरियन जे ॻोठ मां नौजवान जो घर आॾो गोली लॻल लाश अथ। नौजवान जी सुञाणप पीर बख़्श वल अमीर बख़्श मरी तौर थी। थुल मां गुम जड़ियल नौजवान मिठल बुरलो जो बि वाह मां लाश मिलियो। नौजवान गुज़िरियल ॾींहुं घरां निकिरण बाद गुम थी वियो हो। रतो दरो जे PTC आयल आफ़िस भरसम होटल ते पोरियो कंदो नौजवान जो लाश अथायो। पुलिस मूजिबि फोतीअ जी सुञाणप बशीर वल अरबाब भुट्टो तौर थी आहे। बाईपास भरसा होटल ते कमु कंदो हो। सन भरसा वंडे सावे त नामालूम शख़्स जो लाश कपड़नि खां आजो मिलियो। पुलिस पहुची लाश खे पंहिंजे टेबल में वठी माजन ताल खे अस्पताल मुंतकिल कयो।

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-500-69।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओं दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा।
0: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
4: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
3: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
4: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: चलते हैं।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजह स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 02424601100।
5: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे की खारिश, फट फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण, उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राबते लाए 0301-9196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: पाकिस्तान पंहिंजे सरज़मीन तां हर क़ीमत ते दहशतगर्दी खे ख़तम कंदो। असांजो पाड़ेसरी शिकस्त बाद प्रॉक्सीज़ जो सहारो वठी रहियो आहे। पाक फ़ौज दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे। कराची में पाक पहिरियों पासिंग आउट परेड खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त पाकिस्तान जी कोशिशुनि सां अमरीका ऐं ईरान में इस्लामाबाद मफ़ाहम ते सहियूं थियूं। खिते में अमन जे क़याम लाइ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जूं कोशिशूं बि साराह जोगियूं हुयूं। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान पारां पाकिस्तान जो दौरो इस्लामाबाद जे अहम किरदार जो एतिराफ़ हो। खिते में थींदड़ वॾनि तब्दीलियुनि जो असर बि जल्द ज़ाहिर थींदा। पाकिस्तान दुनिया में अमन जो अलमबरदार तौर उभरियो आहे। अमरीका ऐं ईरान जी कुवैत जी दिफ़ाई मांगनि खे निशानो बणाइण जी दावा अमरीकी सेंटकॉम मूजिब ईरान जो ड्रोन ऐं मिज़ाइल स्टोरेज साहिली रेडार्स खे निशानो बणायो वियो। अमरीकी कार्रवाई ईरानी ड्रोन हमले जो ताक़तवर जवाब हो। ईरानी पासदार इनकलाब जी अमरीकी हमला नाकाम बणाइण जी दावा पासदार इनकलाब चयो आहे त ईरानी बहरिया ऐं फिज़ाया सेरक शहर ते अमरीकी हमले खे नाकाम बणायो आहे। जवाब में ईरानी फ़ौजी खिते में मौजूद अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो आहे। अमरीकी नायब सदर जे डिवेंस पारां तशद जो जवाब तशद ज़रिए ॾियण जी धमकी ॾेई छॾी। जेकम जंग बंदी मुआदे ते ईरान खे सहियूं करण बाद इज़त ॾिनी आहे। ईरान खे मफ़ामती मुआदे जे ख़िलाफ़ तव्हां सिधी रीत ॿुधाए सघनि था। तशद जो मुक़ाबिलो तशद ज़रिए ई कयो वेंदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची सां फोन ते राब्तो। अब्बास इराक़ची पारां मुहाणनि जी वापसी ते पाकिस्तान जी पाखण ॿिन्ही परॾेही वज़ीरनि पारां अमन खे हथी ॾियण वारे अज़म जो वरचाओ। परॾेही ऑफिस मूजिबि इसहाक़ डार परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची खे चयो त खिते में पाइदार अमन लाइ इस्लामाबाद अमन अमल खे वधाइण में तामीरी किरदार अदा कंदो रहंदो। अब्बास इराक़ची अमन कोशिशुनि ऐं पाकिस्तान जी सहकार जा थोरा मञा। लबनान इसराइल ऐं अमरीका अमन मुआदे जे फ्रेमवर्क खे सहियूं करे छॾियूं। अमरीकी परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त अतेदुरी अमन मुआदे जे फ्रेमवर्क जे बुनियाद ते अॻिते वधाईंदासीं। फ्रेमवर्क जा मसबत नतीजा निकिरंदा। लबनान अमन मुआदे लाइ असांखे अञा घणो कुझु करणो आहे। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ॿिनि हंधनि ते ऑपरेशन अठ दहशतगर्द मारिजी विया। एस पी आर मूजिब खारान ऐं मस्तूंग में पंजवी ऐं 26 जून ते ऑपरेशन कयो वियो। खारान में ऑपरेशन दौरान 3 दहशतगर्द ऐं मस्तूंग में 5 भारतीय हामी दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियल दहशतगर्द शहरनि ऐं कानून लाकनि इदारनि ते हमलनि में मुलस हुआ। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां 5 ॼणनि जा लाश हथ ॿिनि जी सुञाणप न थी। दादू वेझो मेरनि जे ॻोठ मां नौजवान जो घर आॾो गोली लॻल लाश मिलियो। नौजवान जी सुञाणप पीरबख़्श वल्द अमीरबख़्श मरी तौर थी। थुल मां गुम ॼणायल नौजवान मिठल बुलो जो बवाह मां लाश मिलियो। नौजवान गुज़िरियल ॾींहुं घरां निकिरण बाद गुम थी वियो हो। रतो देरो भरिसां होटल ते पोरियो कंदड़ नौजवान जो लाश हथ पुलिस पहुचो पहुती पियो। बशीर भुट्टो होटल ते कमु कंदो हो। सन भरिसां बंडस हावे तां नामालूम शख़्स जो कपिड़नि खां आजो लाश हथ आयो। सुञाणप न थी। नसो फिरोज़पुर सां क़ौमी शाहरा तां पीरसन जो लाश हथ सुञाणप न थी। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शाखनि ऐं भावनि में पाणी जी शदीद खोड़ बरक़रार। आबादगार सराप एहतजाज। जमाल शाह जमीर रुकण शाख जे आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ कोडरूं खणी एहतजाज। खोरवा जे चोरवा शाख जे आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। झोल जे शाहूआ जे पुतली जे आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ सांगल रोड ते धरणो। अठहठि मोरी भरिसां जाम लगारी शाख जे पुतली में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। सन ऐं मांझर में बि पाणी खोट ख़तम न थी। आबादगारनि जो एहतजाज। घरेलू भरिसां जवाबदार मुड़ुस डंडा हणी ज़ाल खे क़तल करे छॾियो। रशीद वगण थाणे जेल में सजाद कासकली ज़ाल शुमैला खे डंडा हणी क़तल कयो। पुलिस जो चवणु आहे त मक़तूल औरत ॿिनि ॿारनि जी माउ हुई। वाक़िए जो कारण मालूम न थियो आहे। वधीक जांच करियूं पिया। बुरड़ी शाहकरी में क़तल थियल पीपी अॻवान संदसि घरवारी जी नारायण जनाज़े नमाज़ बाद तस्वीन पीपी अॻवान गुलाम नबी मक्सी ऐं संदसि घरवारी समरीन हथियारबंदनि कार ते फायरिंग करे क़तल कयो हो। फायरिंग में ज़ख़्मी थियल 5 वरनि जे नींगर सैफुला जो इलाज जारी। मलीर में वकीलनि पारां ॿिनि वकीलनि ते केस दाख़िल थियण ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई जो बाइकॉट। वकीलनि चवण आहे त कोरंगी जे ज़मान टाउन थाणे ते ॿिनि वकीलनि ते सियासी जमायत सां तालुक ॼाणाए केस दाख़िल कयो वियो आहे। केस ख़तम कयो वञे। नुसर फिरोजी सिविल अस्पताल में दवाओं की कोट खिलाफ़ मरीजों शहर जो एहतियात मुजाहरीन जो चवण है तो करोड़ों रुपये के बजट बावजूद अस्पताल में दवाओं नायाब होजन करे मरीज परेशान हैं। दवा वठण आयल मरीजों से स्टोर कीपर बदतमीजी करे तो सेहत खातो मामले जो फौरी नोटिस वे। खैरपुर भरसा औरत के नांग कखे भी तो औरत पर नांग के पकड़े वरतो। गोठ शाहनवाज खरोस में औरत फसल में गाह कर रही हुई तो खेस नांग कखे भी तो औरत नांग के पकड़े वरतो और नांग के थैली में वजी खड़ी अस्पताल पहुंची वही।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: खुशखबरी हानी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 333 8569।

0: में मौजूद आहिन फौजी भैरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003। आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राबते जे लाइ आसिम हुसैन आराई
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

तुम्हारी उम्मीद तो मुआजिज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद तो मुआजिज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सिंजे बदन तेरे तमाम आसरों खूबसूरत आई सुने समातों से मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। दुआओं के समंदर है चाहतों की बारिश उदास और खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात नींद से जागता जमीन से आसमां तक जिंदगी से मौत तक सांस से तारदगम से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सब और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे तो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जनाब आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अगर आप भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप भी जानना चाहते हैं कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो इनकी क्या ऐसी खास बातें हैं जो आप लोगों को जानना है और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है कि क्या तरीकेकार फॉलो करके ना सिर्फ आप अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं बल्कि आप अपनी खूबसूरती की हिफाजत भी कर सकते हैं। तो खूबसूरती भी वो वाली आपको मिलेगी जो कि हमेशा आपके चेहरे पर बरकरार रहने वाली है और हमेशा आपकी खूबसूरती को बढ़ाने का ही काम करेंगे। तो बिल्कुल जी चाहे व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो आप लोगों की खूबसूरती बढ़ती रहेगी और आप हसीन और खूबसूरत होते रहेंगे। तो यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है जितनी भी समाते हैं तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है और साथ ही साथ मेरी आवाज जहां जहां तक जा रही है उन तमाम लोगों को खुश आमदीद के साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि ये प्रोग्राम भाई आप लोगों तक पहुंचा जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है और यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद है तो आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं और क्या तरीकेकार फॉलो करेंगे किस तरह आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे सब कुछ बताएंगे। और इसी के साथ साथ आप लोग जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है यानी कि बहुत से लोग ऐसे हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए बस हमारा इंतजार कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी खवातीन जो कि हमें किचन में सुन रही होंगी उन तमाम लोगों को जनाब वेलकम कहा जाता है। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जनाब कि प्रोग्राम में आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक यानी कि 2 घंटे में आपके साथ मौजूद रहने वाली है इस उम्मीद के साथ इस मोहब्बतों के साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और बहुत ज्यादा वाली बातें करेंगे और बहुत ज्यादा वाली आप लोगों की फीडबैक्स होते हैं जो कि हम शामिल प्रोग्राम रखते हैं। ऐसे के साथ साथ हम बहुत ज्यादा बातें तो करेंगे लेकिन ऐसा करते हैं यहाँ पर आगा से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगा से प्रोग्राम करते हैं जी सबसे पहले और आगा से प्रोग्राम हमारी जहाँ पर लिस्ट में एक बहुत प्यारा सा कसीदा मौजूद है तो हम ऐसा करते हैं कि कसीदा आप लोगों को सुनाते हैं उसके बाद जैसे ही वापस आते हैं बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरत होते रहिए।

ओके जनाब, आप सुन रही है GFM 88.8 पर। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सखर मोरो, मीरपुर खास मटियारी, सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो। व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है व्हाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। और इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में जो आप लोगों से मैं सवाल पूछना चाहूंगी तो वो क्या होने वाला है उसकी जानिब जरा आ जाते हैं। तो आज का जो मेरा आप लोगों से सवाल होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आपने मुझे बताना है, जितने भी लोग आप हमारे साथ मौजूद है तमाम तरह सुनने वाली समाती मुझे बताने वाली है कि अहले बैत से मोहब्बत क्यों जरूरी है। आज आप मुझे ये बताइए कि अहले बैत से मोहब्बत क्यों जरूरी है। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम लेना चाहते हैं और आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाएंगे और बल्कि राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे LRK सिंगल स्पेस, दीजिए अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8821 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो GFM 88.8 के पेज को आप जैसे ही सर्च कर दें तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है। और उसके बाद आप जैसे ही हमारे पेज पर आते हैं जीए लाड़काना FM 88.8 वाले पेज के ऊपर तो वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में। और साथ ही साथ जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है उन तमाम तो लोगों को जी हम यही कहेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। और साथ साथ आप हमें ये भी बताइए कि क्या आप अभी तक जो है ना वो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो इनका इस्तेमाल कर चुके हैं या फिर आप अभी सोच रहे हैं कि हम इस्तेमाल करेंगे। इतना टाइम हो चुका है खैर से, अब तो आपको लगाने ही चाहिए क्योंकि जब हम व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप लोगों को बताते हैं तो ये चीज आप लोग पहले से जान लें कि अगर आप लोगों को बताया जा रहा है इन प्रोडक्ट्स के बारे में तो ये ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स हैं बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी करने वाले प्रोडक्ट्स हैं। इतनी जबरदस्त क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स के कि आप जब लगाते हैं तो आप खुद ही कहते हैं कि हम पहले क्यों नहीं लगा रहे थे। तो खैर अब आप लगा सकते हैं क्योंकि आपके ऑल स्किन टाइप के लिए है, मर्द हजरात हो ख्वातीन हो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। खूबसूरती को बढ़ाइए और इस्तेमाल करते जाइए व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिल्कुल जी आपके लिए हर जगह अवेलेबल करवा दिए हैं। अगर आपके एरिया में नहीं मिल रहे तो उसके लिए आप डायल कर रहे हैं 03-15-799-0595। जल्दी से नंबर डायल कीजिए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर परचेज करते जाइए।

ओके जी, तो आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बता रहे हैं कि अहले बैत से मोहब्बत क्यों जरूरी है। अगर इस सवाल का जवाब आप जानते हैं, जवाब देना चाहते हैं, तो हमारे प्रोग्राम कैसे बनी है, आप हमें पैनल पर मैसेज कीजिए या फिर आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे के साथ साथ अनवर अली भाई हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम भली करी आया, तमाम के बिजुंदा खुश आमदीद। और मुलाजिम अब्बासी भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करते हैं। मोहम्मद जमान भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम टू यू। और उसके अलावा है जी अब्दुल गफार भाई, वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहे कहते हैं। माइनर मलेसी, माइनर मेलसी से मास्टर अब्दुल गफारान, मोहम्मद बिलाल और मास्टर सईद नूशाही और मास्टर वजीर अहमद चौहान, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सब भाइयों को खुश आमदीद, वेलकम कहा जाता है। और उसके साथ साथ आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइएगा। और अब्दुल गफार भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। सूफियान अहमद हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम सूफियान, कहते हैं कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। नजीर खोस हमें सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, नजीर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया है। उसके साथ साथ आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। रेहाना खान बखर हमारे साथ मौजूद है, रेहाना खान बखर से, तो रेहाना आपको भी हम वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं। साथ साथ आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, टॉपिक को फॉलो कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, कहां से आप हमें सुन रहे हैं ये भी बताइए। और शामिल प्रोग्राम होते जाइए और साथ ही साथ इस्तेमाल करते जाइए व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और यहां पर टाइम हो जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापस आप लोगों के पास आते हैं। तो आप यहीं मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। पूरी पूरी 3 बजे तक आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। प्रोग्राम ही जनाब व्हाइटिश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो व्हाइट एश ब्यूटी सोप। व्हाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर माथली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है. मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं. शामिल प्रोग्राम होते जा रहे हैं और अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं. इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद है, आप हमारे शो सुन रहे हैं और आप शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो आप लोगों को टॉपिक यानी कि पता होना चाहिए कि आज के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से सवाल क्या पूछा है. तो उसके ऊपर अगर आप बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा साबित होगा. अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो आप हमें 888 पर ज्वाइन करेंगे, फेसबुक पर ज्वाइन करेंगे और उसी के साथ साथ टॉपिक को फॉलो करेंगे. उस टॉपिक मैंने आप लोगों से पूछा है कि आप मुझे बता रहे हैं कि अहले बैत से मोहब्बत क्यों जरूरी है. आज के प्रोग्राम का सवाल बिल्कुल यही है कि आप मुझे बताएं कि अहले बैत से मोहब्बत क्यों जरूरी है. और इसी के साथ साथ आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप लोगों को मैं ये बता रही हूँ कि जब आप हमें ज्वाइन करें तो आप लोगों को इन चीजों के बारे में भी पता हो जब आप हमारे साथ साथ मौजूद रहें और आप इस्तेमाल करें व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स. तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती में किस तरह से जो है ना वो निखार लाने के काम आएगा. तो अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम या फिर मजीद व्हाइट एज वालों के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके बारे में जानना सबसे पहले जो ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. तो अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोगों को बताते चलो कि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है ये हमेशा आप लोगों की स्किन के मुताबिक जो है ना वो काम करती है. अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी स्किन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी स्किन को हमेशा चमकदार बनाना चाहते हैं, तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे. और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आपकी जिल्द को फ्रेश और गोरा बनाती है, हर किस्म के नुकसान से बिल्कुल आप लोगों के चेहरे को पाक रखती है, झुर्रियों और दाग धब्बों को खत्म करती है, आपके चेहरे को निखारने का बहुत अच्छा काम करती है. तो अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कोई एवोकाडो एलोवेरा और मिल्क से तैयार की गई है, आपके ऑल स्किन टाइप के लिए है. मर्द हज़रात और ख्वातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है. उसके अलावा सबसे अच्छी बात कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स है ना, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम की बात ना करें तो मजीद जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल अज़ा से तैयार किए गए हैं, यानी कि आप लोगों की खूबसूरती सिर्फ बढ़ती रहेगी. आप लोगों के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट साबित होंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, तो आप लोगों को 3 रातों के बाद जो इनको अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट हो जाएगा. तो आप भी इस्तेमाल करके देखिए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम. और साथ में अगर आप कोई अच्छा सा साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आप फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो आप व्हाइट एज ब्यूटी सोप का ट्राई कर सकते हैं. व्हाइट एज ब्यूटी सोप आपके लिए अवेलेबल है. बिल्कुल जी, व्हाइट एज ब्यूटी सोप भी आपके लिए है, व्हाइट एज फेस वॉश भी है. अब आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कि आप या फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे या फिर साबुन इस्तेमाल करेंगे. उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब की, तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब उन लोगों के लिए है. बिल्कुल जी, जो लोग अपने चेहरे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिनके चेहरे पर एक्ने काफी ज्यादा आ चुके हैं, दाने आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, तो आपके लिए व्हाइट एज का डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब मौजूद है. और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब ना सिर्फ आपके चेहरे के एक्नेस का खात्मा करेगा बल्कि आपके चेहरे को जो है ना वो हमेशा ग्लोइंग बनाए रखेगा. आपके चेहरे पर एक्ने मार्क्स हो, पिंपल किसी भी साइज का हो, ब्लैक पॉट्स हो, व्हाइट हेड्स हो, या फिर आपके चेहरे पर जो एक्स्ट्रा ऑयल आ जाता है, इन तमाम चीजों को खत्म करता है. ये जनाब आयुर्वेदिक फार्मूले से तैयार किया गया है. तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो कि आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइप के लिए है, लड़के लड़कियां सभी लगा रहे हैं. और उसके साथ साथ अगर हम बात करें व्हाइट एज लवली क्रीम की, तो व्हाइट एज लवली क्रीम की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि व्हाइट एज लवली क्रीम एक फेयरनेस फार्मूला है. फेयरनेस फार्मूला भाई आप लोगों के लिए स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. हर किसी को ये जो प्रोडक्ट है ना ये इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है. इसके अंदर हर तरह से जो ना आप लोगों के लिए जो है ना वो बेहतरीन तरीके से तैयार करने की कोशिश की गई है, जिसके 30 विटामिन के कैप्सूल ऐड किए गए हैं, जो कि ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाने का काम करेंगे बल्कि आपके चेहरे को हमेशा प्रोटेक्ट भी रखेंगे. और उसके अलावा इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है. और सनस्क्रीन ऐड करने का जो फायदा है ना वो ये है कि भाई आप लोगों की स्किन जो है वो धूप से बची रहे. अगर आप इस्तेमाल करें व्हाइट एज लवली क्रीम तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट में कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुके हैं. तो जल्दी जाइए, परचेज कीजिए और साथ में डायल करते जाइए 03 15 799 0595.

ओके जनाब, तो प्रोग्राम सुन रही है व्हाइट एश एंड ई स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ई स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आप इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोई सा भी प्रोडक्ट तो आप हमें बताइए, ताकि हमें पता चले कि हमारे जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है वो इस्तेमाल कर रहे हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स, वो तो आप बताएंगे ना। तो जल्दी से बताइए और इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम कैसे बनते जाइए। और यहाँ पर आपके मैसेजेस हैं जिनकी जानिब हम आते हैं, कॉमेंट्स अगर आप हमें कर रहे हैं फेसबुक वाली साइट पर, तो आप जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर भी करते जाइए।

जी क्या बात है। इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद ही प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं और खूबसूरतियाँ हासिल करते जा रहे हैं, चाहे आप मर्द हज़रात हो चाहे आप ख़वातीन हो। इसी के साथ साथ डायल करते जा रहे हैं 03157990595 और डायल करने के बाद नंबर के ऊपर जो है ना आप उन्हें बताइए कि आप कौन से एरिया से हैं, कहाँ पर अवेलेबल अभी तक प्रोडक्ट्स नहीं हुए हैं, ताकि अवेलेबल हो जाए और आप लोगों को लेने में आसानी हो। ठीक है, सो नजीर खोसू भाई हमें सुन रहे हैं, कहते हैं कुछ ऐसे कुएं जरूर खोदें जिनका पानी आपने नहीं पीना और कुछ दरख्त ऐसे लगाएं जिनकी छाँव में आपने नहीं बैठना। उसका मतलब लोगों के लिए आसानियां पैदा करें कि वो आपके मरने के बाद भी आपके लिए सदका जारिया बने रहे। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात आपने हमारे साथ शेयर कर दी है। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और फहीम शेख हमारे साथ मौजूद है, मौलाना सलामत आपको वेलकम कहा जाता है। रेहाना खान हमारे साथ मौजूद है, बखर से आप हमारे साथ हैं। और वरियाम अली जतोई हमारे साथ हैं, कहते हैं सिद्रा शो में दिल से आपको वेलकम करते हैं, हम भी आपको वेलकम करते हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। और फहीम कहते हैं कसीदा सुनाएं। जी बिल्कुल, आपका कसीदा हम लगाते हैं। और अब्दुल रजाक कहते हैं मोहम्मद खान कुंभर, मोहम्मद अली कुंभर हली पोटो स्टार ज्वेलरी से आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपको खुश आमदीद कहा जाता है। और चाचा खाले झूड़ी जो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, मोहब्बत तो पूरी इंसानियत से जरूरी है पर वो तो अहले बैत हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना। ये टॉपिक आंसर, ओके जी बहुत बेहतरीन। और कैसर खान हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम। मीरपुर खास आप हमारे शो सुन रही हैं, खुश आमदीद। बताएं जरा मीरपुर खास में अवेलेबल हो चुके हैं प्रोडक्ट?

ओके जी, महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद, गेटिंग ग्रेट होस्टिंग मेमार जी, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, मौलाई मुजाहिद बोजार हमारे साथ मौजूद है ठूफ चूसल से। मौलाई मुजाहिद बोजार, वालेकुम अस्सलाम, कहते सिद्रा जी आप कैसी हैं? आप हमेशा की तरह खैरियत से होंगी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं और आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम भी आपके साथ मौजूद हैं। अब्दुल खालिक गबोल हमारे साथ हैं। ओके बाजी, तव्हांजी सफ़ा ठीकु आहे, प्यारा भाउ, तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो, ठीकु ठाक आहियो? वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो था कोन? ऐं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जी सभ खां बहितरीन ॻाल्हि इहा आहे त वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जा जेके बि प्रोडक्ट आहिनि उहे सभु तव्हांजी ऑल स्किन टाइप जे लाइ आहिनि। यानी की ईअं न त तव्हां सोचो त बाबा हीउ प्रोडक्ट सिर्फ़ु इस्तेमालु कंदियूं ख़वातीन माइनि जे लाइ आहिनि, न बाबा ईअं कोन्हे को। तव्हां अगरि मर्द हज़रात आहियो, अगरि जेके बि माण्हू जेके असांखे ॿुधनि पिया, जेके इहो सोचींदा आहिनि त असां हीउ प्रोडक्ट कोन इस्तेमालु करे सघंदा आहियूं, असां ब्यूटी क्रीम नथा आणे सघूं, असां नाइट क्रीम नथा इस्तेमालु करे सघूं, असां सोप न लॻाईंदा, असां फेस वॉश लॻाईंदा, त वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपके लिए हर तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात यह है कि जनाब आप लोगों के लिए, यानी कि हर एक इंसान के लिए इन्होंने सोचा है कि हर एक इंसान की क्या एक बेसिक नीड हो सकती है जिसे हम पूरा कर सकें, तो इन्होंने बिल्कुल आप लोगों के मुताबिक प्रोडक्ट्स को तैयार किया है। अगर आप फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं तो वाइट एज का फेस वॉश आपके लिए मौजूद है जो कि विटामिन सी से तैयार किया गया है। अगर आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो वाइट एज का ब्यूटी सोप आपके लिए अवेलेबल है जो एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क से तैयार किया गया है। अगर आप नाइट क्रीम नहीं इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए फेयरनेस क्रीम तैयार की गई है जो कि वाइट एज लवली क्रीम के नाम से, जो कि विटामिंस का फार्मूला है। जनाब आप जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा। अगर आप एक्ने की वजह से परेशान है तो आपके लिए डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब मौजूद है, और उसके अलावा वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है जो कि आप रात के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक नाइट क्रीम, एक परफेक्ट नाइट क्रीम। तो आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, ये जितने भी प्रोडक्ट्स आपके लिए हैं फुल भाई आप लोगों की स्किन के मुताबिक है, आप सारे लोग इन्हें इस्तेमाल करके देखिए ताकि आपको पता चले कि वाकई इतने अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं।

ओके जी अब्दुल खालिक अपोल कहते हैं भाजी असा वट क्रीम न पो मिले हाँ छाक भा तुम किथा असा के बुधो पाया यो बुधाए जो इन का अलावा ही जो हाँ मैं नंबर बुधाइंद नंबर से तुम एक दफो राबो जरूर कजो जी तवाज सिटी में तवे गोठ में तवे एरिया में ही प्रोडक्ट अवेलेबल थी वन प्रोडक्ट आन वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स नंबर तुम डायल कदा 03-1579-0595 03-1579-0595 ही नंबर है जैसे तुम राबो करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सको आराम से।

ओके जनाब, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड जी स्किन ब्यूटी शो. यहाँ पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, अपनी खूबसूरती को बढ़ाते जा रहे हैं और मजीद खूबसूरत होना चाह रहे हैं, तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल लाजमी किया करें. और साथ साथ जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद है, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए. और बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद है. फहद लाशारी हमारे साथ है. फहद भाई लिखते हैं, टॉपिक अहले बैत से मोहब्बत इसलिए जरूरी है, अहले बैत के नाना का दीन बचाया उन्होंने और कर्बला का वाकया दुनिया और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए बेमिसाल है. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता. और पोइट्री लिखते हैं कि कर्बला की खाक पर सजदों की वो मेराज है, नामे हुसैन अलैहिस्सलाम आज भी हक की बड़ी आवाज है. ओके जी, ओके, बेहतरीन. आपको खुशामदीद कहा जाता है फहद भाई जान. और इरम हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम, कहती मेरी प्यारी दिलबर दोस्त, आप ही मिस यू. और आपने मुझे मिस किया या नहीं? बिल्कुल जी, आपको मिस किया था, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ. इमरान अली बिरोही भाई लिखते हैं.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
1: किरदार जो एतराफ़ हो खिते में थींदड़ वॾनि तब्दीलनि जो बि असर जल्द ज़ाहिर थींदा। पाकिस्तान दुनिया में अमन जो अलमबरदार तौर उभरियो आहे। अमरीका ईरान जो हिक ॿिए जे दिफ़ाई मांगनि खे निशानो बणाइण जी दावा। अमरीकी सेनकाम मूजिबि अमरीका ईरान जो ड्रोन ऐं मिज़ाइल स्टोरेज ऐं साली रिडार्स खे निशानो बणायो वियो। अमरीकी कार्रवाई ईरानी ड्रोन हमले जो ताक़तवर जवाब हो। ईरानी पासदान इनकलाब जे अमरीकी हमला नाकाम बणाइण जी दावा। पासदान इनकलाब चयो आहे त ईरानी बेरिया ऐं फिज़ाया सिरक शहर ते अमरीकी हमले खे नाकाम बणायो आहे। जवाब में ईरानी फ़ौज ख़िते में मौजूद अमरीकी एरनि खे निशानो बणायो आहे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पारां तशद जो जवाब तशद्द ज़रिए ॾियण जी धमकी। जेडी वेंस चयो आहे त जंगबंदी मुआहिदे ते ईरान खे सहयोग करण बाद इज़त ॾींदी आहे। ईरान खे मफ़ामती मुआहिदे ते ख़िलाफ़ आहिनि त सिधी ॿुधाए सघनि था। तशद्द जो मुक़ाबिलो तशद्द ज़रिए ई कयो वेंदो।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000।
4: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385769।
5: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद वाइटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आहे।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे बि मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

चाहते हैं वाइटनिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो मैंने आप लोगों को बताया। अभी जो बारी है वो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने की है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए है और खास करके उन लोगों के लिए तैयार की गई है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, जिनकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है और काफी ज्यादा सेंसिटिव स्किन होने की वजह से वो कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले जो ना वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि हमने इस्तेमाल करना है या फिर नहीं इस्तेमाल करना। तो बिल्कुल जी, अगर हम यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जिक्र कर रहे हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ना सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि आपकी खूबसूरती के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी साबित है। और सबसे बड़ी बात की ये डॉक्टर्स के

आने के अंदर तैयार शुदा हुआ प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो है ना वो तमाम चीजें ऐड की गई हैं जो कि आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाती रहेंगी। और साथ साथ जी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप परचेज करते हैं तो आप लोग ये भी चीज देखते हैं कि है ना जी मथा जो फोटो आ ना माई जो वो भी डॉक्टर माई जो अथव तो डॉक्टर्स खां फुल जो ना पुछा करे फुल तहकीक करे कोई ही प्रोडक्ट तैयार कयो आ जो नालो आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन से तैयार थियल आहे, वाइटामिन ई बीट्स इन जे अंदर मौजूद आहिनि ऐं तव्हांजी स्किन के निखारींदी, गोरो बणाईंदी, तव्हांजे चेहरे जा जेके डार्क सर्कल आहिनि उहे खत्म कंदी ऐं तव्हांजी स्किन जेका आहे न अगरि मुरझायल रहंदी आहे, तव्हां वक़्त खां पहिरियां कुराड़ा थी विया आहियो त इहे सभु चीज़ूं ख़तम थींदियूं, तव्हांजी स्किन ग्लो करणु शुरू कंदी ऐं तव्हांजी स्किन ते निखार अचणु शुरू थी वेंदो जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कयो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन फेस वॉश बि मिली रहियो आहे ऐं डी स्किन फेस वॉश जेको ईज़िली तव्हां इस्तेमालु करे सघो था ऑल स्किन टाइप जे लाइ आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि ऑल स्किन टाइप जे लाइ आहे। सो डी स्किन फेस वॉश जेको हाइलोरोनिक एसिड सीरम सां तयारु थियल आहे, हुन जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त अगरि तव्हांजी स्किन जेका डीहाइड्रेट थी वई आहे, तव्हांजी स्किन सफ़ाई रुखी सुखी लॻंदी आहे त तव्हांजी स्किन खे हाइड्रेट कंदो ऐं तव्हांजी स्किन खे ग्लो ॾींदो ऐं तव्हांजी स्किन सफ़ाई वीआईपी बणाए छॾींदो। सो अगरि तव्हां मर्द हज़ात आहियो, ख़वातीन आहियो, जेके बि माण्हू असांखे ॿुधनि पिया, टीनेजर्स आहियो ख़ासि करे, त सभु कोई इस्तेमालु करे सघे थो, छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या डी स्किन फेस वॉश हुजे, हीउ तव्हांजी स्किन जे मुताबिक़ तयारु कयो वियो आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां इस्तेमालु कंदा, नाइट क्रीम आहे राजे टाइम इस्तेमालु कयो ऐं अगरि तव्हां डी स्किन फेस वॉश इस्तेमालु करणु चाहियो था त हुन जो बाक़ाइदा तव्हां इस्तेमालु करे सघो था। ॾींहं में टे चारि दफ़ा तव्हां ईज़िली इस्तेमालु करे सघो था, ॾींहं में टे चारि दफ़ा तव्हां लॻायो, उन खां पोइ जेको आहे न तव्हांखे असल रिज़ल्ट जॾहिं मिली वेंदो पोइ तव्हां पाण ई चवंदा त वाह छा ॻाल्हि कजे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश जी। त इहे उहे प्रोडक्ट आहिनि जंहिंजे बारे में न मतिलबु मां तव्हांखे ॿुधाईंदी आहियां, जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त वाक़ई ही प्रोडक्ट जेके आहिनि उहे केतिरा ज़बरदस्त आहिनि, हिन प्रोडक्ट जे इस्तेमाल सां तव्हांखे केतिरो सुठो रिज़ल्ट मिली सघे थो। सो तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसो ऐं तव्हां इस्तेमालु कंदा राजे टाइम ते ऐं तव्हां इस्तेमालु करण खां पहिरियां पंहिंजो फेस वॉश लाज़मी कंदा कयो। अक्सर जेके माण्हू हूंदा आहिनि जेके पंहिंजो फेस वॉश न कंदा आहिनि ऐं ईअं ई बसि क्रीम लॻाए छॾींदा आहिनि त इहो सफ़ा न कंदा कयो, तव्हां सभ खां पहिरियां पंहिंजो फेस वॉश कयो, उन खां पोइ तव्हां छा कंदा, पोइ तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम पंहिंजे चहिरे ते अप्लाई कंदा। इहो अगरि प्रोसेस तव्हां कयो था त तव्हांखे ॿिनि रातिनि जे इस्तेमाल सां तव्हांखे रिज़ल्ट वाज़े जेको आहे नज़र अचणु शुरू थी वेंदो। सो तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या डी स्किन फेस वॉश हुजे, ॿई चीज़ूं तव्हां इस्तेमालु करे ॾिसो, तव्हांखे ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिली वेंदा ऐं नथा मिलनि अगरि तव्हांजे एरिया में अवेलेबल न आहिनि त पोइ तव्हां डायल कयो 03-15-799-0595। हीउ कॉन्टेक्ट नंबर आहे जंहिं ते तव्हां राबितो करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर्स ते ही तमामु प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए सघो था। ओके जी, सो ही तव्हां सां गॾु उहे ॻाल्हियूं आहिनि जेके ज़रूरी हूंदियूं आहिनि तव्हांखे ॿुधाइण, जीअं तव्हांखे ख़बर पए त बाबा वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि, हिन जो इस्तेमालु तव्हांजे ख़ूबसूरती जे लाइ केॾो ज़रूरी आहे। उन खां अलावा मूं अॼु अव्हां खां सवालु जेको पुछा हुनखे रिपीट कंदासीं, त सवालु अॼु मां अव्हां खां पुछो, एले बे सां मुहबत छो ज़रूरी आहे? इहो तव्हां मूंखे ॿुधायो था, तमामु ख़ूबसूरत ऐं तमामु ज़रूरी सवालु मूं अव्हां खां पुछो आहे। उन खां अलावा तव्हां मूंखे जॉइन कयो पिया 888-1 ते फेसबुक ते, जेके माण्हू फेसबुक ते मूंखे ॿुधनि पिया, फेसबुक ते तव्हां मौजूदु आहियो त तव्हां पोस्ट खे लाइक शेयर कंदा हलो, पंहिंजे दोस्तनि खे मैंशन कंदा कयो जे उन्हनि खे बि ख़बर पवे त मार्केट में कहिड़ा प्रोडक्ट हलनि पिया ऐं हुननि खे बि इस्तेमालु करणु ज़रूरी आहिनि। घुर्जनि बाबा हर कंहिंजी इहा बेसिक नीड हूंदी आहे त तव्हांजी जेका ख़ूबसूरती आहे न उहा हमेशह वधंदी रहे ऐं अगरि तव्हांजी उमिरि थोरी वधंदी वेंदी आहे न, उमिरि सां जीअं जीअं उमिरि तव्हांजी वधंदी वेंदी त तीअं तव्हांजी स्किन खे प्रोडक्ट ज़रूरी हूंदा आहिनि, प्रोडक्ट तव्हां इस्तेमालु कंदा कयो। अगरि तव्हांजी स्किन ते रिंकल अचणु शुरू थी विया आहिनि त तव्हांखे ज़रूरत आहे त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो, जे तव्हांजे चहिरे जा जेके रिंकल आहिनि उहे ख़तम थी वञनि ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती में जेको आहे न इज़ाफ़ो अची वञे। सो लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो, अगरि तव्हां इस्तेमालु कयो पिया त मूंखे ॿुधाईंदा हलो।

ओके जी, सो तव्हां सां सां गॾु मौजूदु आहे, तव्हांजा फीडबैक्स आहिनि जेके असां शामली प्रोग्राम कंदा हलंदासीं, अगरि ॾिसूं था ते पैनल ते मैसेज आहिनि। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्राम हिंगोरजा से, दिलावर हुसैन सोलंगी बाजी सिद्राम केसी है। योर टॉपिक आंसर, अहले बैत की मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में लाजमी है, क्योंकि यही मोहब्बत कब्र में और कयामत के दिन शिफाहत का जरिया होगी। ओके जी, ड्राइवर नजीर सोलंगी हमारे साथ, जमादार खुदा बख्श सोलंगी, मुदस्सिर सोलंगी, आसिफ एंड मुबशिर सोलंगी हमारे साथ हैं। तमाम भाइयों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और अरीबा हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम अरीबा, कहते हैं आप ही छाला, आप ही सफा ठीक है, तमाम बताया कि आयो अरीबा। और हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल किया था। और उनका अलावा जिको

ओही जी इमरान भाई भी असा गड मौजूद है इमरान भाई तां जो मोहब्बत को प्रोग्राम बुधो पया आई उन का अलावा चिकवा सो हिना भी असा गड मौजूद है हिना भी असन शो बुधी पई हिना तवां जो भी मोहब्बत हूं आहे और अब्दुल खालिक गबोल भा तवां जो मोहब्बत हूं आहे मोहम्मद जमान कहते हैं बुआ जी आज वॉइस कुछ ज्यादा ही स्वीट लग रही है इसका कोई खास राज शायद आपने कुछ दिनों के बाद सुनी है तभी आपको ऐसा लग रहा होगा और वहीद वफाई आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं और वहीम शेख आपका भी बहुत थैंक यू मौलाई मुजाहिद बोजार कहते हैं सिद्धू जी टॉपिक अहले बेत पंचतन पाक से मोहब्बत उतनी ही जरूरी है जैसे कि जिंदा रहने के लिए सांस जरूरी है क्या बात है जी बहुत बढ़िया और चाचा खालिद कहते हैं कि ये नात लगा दें पॉसिबल फॉर यू जी जी बिल्कुल लगाते हैं आपने बड़ी अच्छी नात फरमाइश करी है और मोहम्मद रमजान हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते बाजी माशूक मोलाई शहर बांदी से आपका शो जबरदस्त चल रहा है मेरा मामू निजामदीन खास के लिए अच्छा वो भी यानी कि हमारा शो सुन रहा है बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया आपका मैसेज समझने में थोड़ी सी मुश्किल हुई लेकिन कोई बात नहीं जी आपका मैसेज हमें समझ आ गया और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा कसीदा लिस्ट में लगा लिया है जो कि हम साथ साथ सुनते रहेंगे आप लोगों के साथ बातें करते रहेंगे और मोहम्मद रमजान भाई आपका भी शुक्रिया और आपके मामू है निजामदीन खास के लिए उनका भी बहुत शुक्रिया और उसके अलावा अब्दुल खालिक गबोल हमारे साथ कहते ऐसा शहर जहांगर सेवन शरीफ आहे बाजी तवा एक क्रीम असा के गिफ्ट करे मोकलियो तवा जी मेहरबानी थिंदी यानी कि सब हते उए मानु बैठा जे के गिफ्ट खपे पेरिया सो तवा एक दफो पाना वठो तवा के वणी वेदी उन खा पोई तवा लगाण स्टार्ट कयो आई पोई तवा के जको ना सा गिफ्ट नी दासी आई सब खा पेरिया ये गाल हुंदी ना अगर दिसो गिफ्टन जो सिस्टम अगर असा स्टार्ट भी कंदासी त उन में यो नो त तवा खा या त असा रेपर घुराइंदा आयो खाली या त तवा खा पुछंदा आयो पार पता तडी ता खबर त जने ता वट प्रोडक्ट अवेलेबल हुंदो सो ता पेरिया पाना वठो उन खा पोई ता के सा गिफ्ट नी दासी सही सो थोड़ो पान भी हथ पेरण

ओके जी, नियाज हुसैन मलिक हमारे साथ मौजूद है। बाजी आपकी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कहते नाइस योर शो, थैंक यू वेरी मच नियाज हुसैन मलिक भाई। और गुलाम रहीम बलोच कहते सलाम जबरदस्त प्रोग्राम वोट झड़बी थर पारकर खां वफा। गुलाम रहीम बलोच असा सगर मौजूद है, सुभाष मोहब्बतवान प्रोग्राम बुधो पिया। और फिरोज अली बिरोही असा सगर मौजूद है, हेलो अदा। और किशोर भाई कहते सलाम अदा, खुश आयो अदा, तुम सफा ठीक मुझो अदा किया मजे में। और हैं जी हमारे साथ, अच्छा चाचा खालिद कहते अमा उमर जी गाल कई त मुखे भी एहसास थियो, मुझी भी उमर वधंदी पई वने, दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड टू मिस्टर इरफान सियाल साहब सेंड मी योर प्रोडक्ट्स। इरफान सियाल साहब आपको भेज देंगे जी, आप उनसे अच्छे से कांटेक्ट कीजिए और आपको मिल जाएंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश, आप इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपकी जो बढ़ती उम्र है ना वो जरा कंट्रोल में आ जाए।

0: अच्छा दर्दे दिल कह रही है सलाम अलैकुम चंदा कैसी हो, वेलकम टू शो, आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है दर्दे दिल, और साथ साथ चाचा खालिद कहते हैं बट मां तो पेस्टन थी परचेज करना, बिल्कुल चाचा तां पेस्टन थी परचेज कयो, और न खा अलावा हमारे साथ हैं किशोर भागे थे बढ़ती उम्र और गुजरता वक्त कभी किसी के रोकने से रुका है, आप ये जरा सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, अगर आप अपनी उम्र जो है ना वो ऐसा होता है जैसे आप एक्ट्रेस को देखेंगे, मैं बार बार इस बात को ऐसे इसलिए दोहराती हूँ ताकि ये चीज जरा आप लोगों को थोड़ी सी समझ आ जाए, एक ना वो अदाकार नहीं वो विवाह मूवी वाली जो एक्ट्रेस है वो कितनी पुरानी मूवी, आज भी अगर आप उस औरत को देखेंगे ना उस औरत को अगर आप देखेंगे तो वो आपको 25 साल की लगेगी, और वो 25 साल की आपको क्यों लगेगी, क्योंकि उसकी उम्र क्यों नहीं बड़ी, जाहिर सी बात है वो उम्र तो उसकी काफी ज्यादा, लेकिन वो जो ना आज भी उतनी यंग लग रही है। तो ये ऐसा फायदा उन लोगों को मिलता है जो अपनी स्किन केयर कर रहे होते हैं, अपने चेहरे का ख्याल रख रहे होते हैं, उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जिनके इस्तेमाल से आपकी जो स्किन है ना वो हमेशा ग्लोइंग रहती है, टाइट रहती है, आपके चेहरे के रिंकल नजर नहीं आते, तब आप जो है ना वो चाहे आपकी उम्र कितनी हो जाए लेकिन आप जो है ना वो हमेशा यंग और जवान नजर आते हैं। तो ये कमाल है जब आप अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, वक्त जाहिर सी बात है वो किसी के हाथ नहीं आता, वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन ऐसा है कि आप अपनी स्किन का ख्याल रखकर आप अपनी उम्र जो है ना वो ऐसा फील करवा सकते हैं लोगों को कि आप अभी भी जवान हैं, और उम्र जैसे ढलती जाती है ना वैसे ही आपकी स्किन को जो है ना वो प्रोडक्ट की नीड होती है, आपकी स्किन जो है ना वो प्रोडक्ट मांगती है, तो उसे प्रोडक्ट दिया करें, और अगर आप जो है इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम तब तो भाई क्या ही बात बन जाएगी, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, डी स्किन का फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, आप हमेशा खूबसूरत और ग्लो करते रहते हैं, तो इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरतियां हासिल करते रहिए, और मेरी बातें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि पता ही नहीं चलता यहाँ पर। हाँ जी, ब्रेक का टाइम हुआ जाता है तो हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी से वापस आप लोगों के पास आते हैं, तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए, आपका हमारे साथ पूरी पूरी 3 बजे तक प्रोग्राम सुन रही है व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरत होते रहिए।
1: FM 88 Network, सिंध की आवाज। आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिला आसिम हुसैन आराई, 0307359212।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटरी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3-8-5-6-9।
1: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 0300-00-27234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-38-65453।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा।
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

लड़के लड़कियां सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइप के लिए है। हर स्किन टोन के ऊपर आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ दो रातें आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ट्राई करके देखिए, खूबसूरती अब आप इजीली हासिल कर सकते हैं जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरती को बढ़ाते रहिए और हमेशा खूबसूरत होते रहिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर सनम मारवी की आवाज में एक बहुत प्यारा कलाम मैंने लिस्ट में लगाया है, तो इस कलाम को साथ साथ सुनेंगे। आप क्या कह रही हैं, आपके फीडबैक्स की जाने भी आते हैं। आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल करती रहिए, खूबसूरतियाँ हासिल करती रहिए।

ओके जी, सो हमारे साथ यहाँ पर इरम मौजूद है. इरम, आपने मैसेज किया है जी नहीं मैं नहीं जाती, और ये साजन माशी हमारे साथ मौजूद है, गोर जान मोहम्मद माशी. ओके जी, आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रही है. अगर मैसेज थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है तो माजरत कर देती हैं, आप हमारे साथ है. और उसके अलावा जी हमारे साथ मायरा हमारा शो सुन रही है. मायरा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं. अच्छा, अब्दुल खालिक गबोल भाई लिखते हैं, हाणे हिकड़ो क्रीम वठबो तव्हां ते भरोसो करे ॾिसूं था. बिल्कुल जी, तव्हां असां ते भरोसो करे ॾिसूं था. तव्हां क्रीम वठो, चाहे उहा डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या फिर वाइटेश ब्यूटी क्रीम हुजे, लॻाइण खां पोइ तव्हांखे अंदाज़ो थी वेंदो त वाक़ई तव्हां जेको प्रोडक्ट वरितो आहे उहो जहिड़ो तहिड़ो न आहे. बाबा, हीउ प्रोडक्ट वाक़ई सफ़ा ख़ूबसूरत आहिनि, तव्हांखे ख़ूबसूरत बणाए छॾींदा. सो ट्राए करे ॾिसजो. और मोहम्मद समान कहते हैं, बुआ जी हाँ भाई क्या ही कर सकते हैं भला. नहीं नहीं चाचा, वो मैं इनकी बात नहीं कर रही थी.

मिली। सो टाइम देखा तो जरा टाइम हमारे अलविदा करने का करीब आ चुका है। सो आप लोगों से इजाजत लेंगे और इसी के साथ साथ शमी चाचर भी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। और ज्यादा ज्यादा कहकर जाऊंगी कि आप तमाम लोग जितने भी हमें सुन रहे हैं, आप सारे लोग चाहे व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करें, तो आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम है, डी स्किन फेस वॉश है, व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम है, व्हाइटिश लवली क्रीम है, डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्ने ट्यूब है, व्हाइटिश सोप है, फेस वॉश है, लोशन है, उसके अलावा हेयर रिमूवल की लोशन है, मुख्तलिफ तीन अलग अलग फ्लेवर्स के अंदर, जो कि आप ट्राई कीजिएगा, आप इस्तेमाल कीजिएगा और आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो आप मर्द हजरात हैं, ख्वातीन सारे लोगों के लिए तैयार की गई, ऑल स्किन टाइप के लिए है, तो आप इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरतियों को बढ़ाते रहिए। और इसी के साथ साथ हम इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे जी कल वाले प्रोग्राम में। तो कल 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहने वाला है। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कहीं कोई गलती हो गई तो हम माजरत ख्वाह हैं, कोई ऐसा लफ्ज बोल दिया जो आपको अच्छा ना लगा हो तो उसके लिए भी माजरत करते हैं। सो मोगलानी ना है बाबू, सन सलामत, सा सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: असांजो पाड़ेसरी शिकस्पात प्रॉक्सीज जो सहारो वठी रहियो आहे। पाक फौज दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे। कराची में पाक बेरिया जी पासिंग आउट परेड खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान जी कोशिशुनि सां अमरीका ऐं ईरान में इस्लामाबाद मफ़ामत ते सयूं थियूं। खिते में अमन जे क़याम लाइ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जूं बि कोशिशूं साराह जोगियूं हुयूं। ईरानी सदर मसूद पज़ेशान पारां पाकिस्तान जो दौरो इस्लामाबाद जे अहम किरदार जो एतिराफ़ हो। खिते में थींदड़ वॾनि तब्दीलनि जो असर बि जल्द ज़ाहिर थींदा। पाकिस्तान दुनिया में अमन जो अलमबरदार तौर उभरियो आहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राख़्ची सां फोन ते राब्तो। अब्बास राख़्ची पारां मोहाणनि जी वापसी ते पाकिस्तान जी वाखाण। ॿिन्ही परॾेही वज़ीरनि पारां अमुन खे अथी ॾियण वारे अज़म जो वर्जाओ। परॾेही ऑफिस मौजिब इसहाक़ डार परॾेही वज़ीर अब्बास राख़्ची खे चयो त ख़िते में पायदार अमुन लाइ इस्लामाबाद अमुन अमल खे वधाइण में तामीरी किरदार अदा कंदो रहंदो। अब्बास राख़्ची अमुन कोशिशुनि ऐं पाकिस्तान जे सहकार जिते बि थोरा मञा। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ॿिनि हंधनि ते ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द मारिजी विया। एसपीआर मूजिबि खारान ऐं मस्तूंग में 25 ऐं 26 जून ते ऑपरेशन कयो वियो। खारान में ऑपरेशन दौरान 3 दहशतगर्द ऐं मस्तूंग में 5 भारतीय हामी दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियल दहशतगर्द शहरनि ऐं कानून लाॻू कंदड़ इदारनि ते हमलनि में मुलविस हुआ। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां 5 ॼणनि जा लाश हथ ॿिनि सुञाणप न थी। दादू वेझो मरीज़नि जे ॻोठ मां नौजवान जो घर आॾो गोली लॻल लाश मिलियो। नौजवान जी सुञाणप पीर बख़्श वल्द अमीर बख़्श मरी तौर थी। ठुल मां गुम ॼाणियल नौजवान मिठल बुरड़ो जो पल वाह मां लाशत मिलियो। नौजवान गुज़िरियल ॾींहं घरां निकिरण बाद गुम थी वियो हो। रतो देरो भरिसां होटल ते फोरियो कंदो नौजवान जो लाश हथ। पुलिस मूजिबि फौजी पोरत बशीर भुटो होटल ते कमु कंदो हो। सन भरिसां बि इंडस हाईवे तां नामालूम शख़्स जो कपिड़नि खां आजो लाश हथ। सुञाणप न थी। नुसर फिरोज भरिसां बि क़ौमी शाहराह तां पीरसन जो लाश हथ। सुञाणप न थी।
1: मुकलकल 2 महीना थिया आहिनि त उन्हनि जी पुठियुनि ताईं पाणी पीअण जे लाइ न आहे। मछी पकड़ माण्हू कीअं मरंदा। असांखे 3 महीननि खां वठी पाणी न आहे मिलियो।
0: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शाखनि ऐं वाहन में पाणी जी शदीद खोट बरक़रार। आबादगार सरापा एहतजाज। जमाल शाह जे मीर रुकण शाख जे आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ कोडरूं खणी एहतजाज कयो। कोरबा जे चोरबा शाख जे आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। झोल जे शाहूबा जे पुथरी जे आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ सांगल रोड ते धरणो। 8-8 मोरी वरसां जाम लॻाई शाख जे पुथरी में पाणी जे खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि एहतजाज कयो। सन ऐं मांझंदि में पाणी खोट ख़तम न थी। आबादगारनि जो एहतजाज। कराची जी अदालत में बीआरटी करप्शन केस जी ॿुधणी। जवाबदार ज़मीर अब्बासी वधीक 6 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते एंटी करप्शन हवाले। ॿुधणी दौरान अदालत जांच आफ़ीसर खां सवाल कयो जवाबदार जो बयान खे रिकॉर्ड जो हिसो बणायो वियो आहे या न। जांच आफ़ीसर ॿुधायो त जवाबदार ज़मीर अब्बासी जे बयान खे रिकॉर्ड जो हिसो बणायो वियो आहे। ॿुधणी दौरान जवाबदार ज़मीर अब्बासी अदालत खे ॿुधायो त ख़बर न आहे त छो असेंबली जा बैंक अकाउंट्स ऐं ॿिया तफ़सील छो तलब कया पिया वञनि। मनसूबे जो कंसल्टेंट बि हिकु वफ़ाकी वज़ीर जो वेझो माण्हू आहे। छा मां रोक रक़म खणी भॼी वियो आहियां। अदालत केस जी ॿुधणी 1 जून ताईं मुलतवी करे छॾी। बलीर में वकीलनि पारां ॿिनि वकीलनि ते केस दाख़िल थियण ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई जो बायकॉट। वकीलनि जो चवण आहे त कोरंगी जे ज़मान टाउन थाणे ते ॿिनि वकीलनि ते सियासी जमायत सां तालुक ॼाणाए केस दाख़िल कयो वियो आहे। केस ख़तम कयो वञे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में नींगर समेत 4 ॼणा वेंझ ते ॿुॾी विया। हिकु जो लाश हथ। ॿिनि जी गोला जारी। न्यू सैदाबाद वेझो नौजवान ब्रहीम कोरी रोड़ी केनाल में ॿुॾी वियो। गोला जारी। सखर भरिसां भंडारा केनाल में ॿुॾी पियल नींगर मजीद मिराणी जो ॿिए ॾींहं बि लाश न मिलियो। गंबट वेझो नींगर लालबख़्श भटी वाह में ॿुॾी वियो। गोला जारी। लाड़काणे में गुज़िरियल ॾींहुं राइस केनाल में ॿुॾी पियल नौजवान मुज़म्मल शेख जो लाश हथ।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300 3385 569 0300 3385 69।

0: साईं कालम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बे डरंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569 03-00-33-8569।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: बयान जी दावा पासरान इनकलाब चयवा ईरानी बहरिया ए फिजाई सिरक शहर से अमरीकी हमले के नाकाम बनाया हुआ है। जवाब में ईरानी फौजी खिते में मौजूद अमरीकी अड्डन के निशानों बनाया हुआ है। अमरीकी नायब सदर जेड वेंस पारा तशद्दुद जो जवाब तशद्दुद जरिए देने की धमकी। जेड वेंस चया है जंगबंदी मुआहदे से ईरान के सहयोग करण बाद इज्जत दिनी है। ईरान के मुआहदे के खिलाफ आन सीधी रीत बुधा सन था। ईरान अमरीकी अमलन के मुआहदे की भंजकड़ी करार दई छो। ईरानी परदेही वजारत चया है वेचो भर जहा मुल्क अमरीका खिलाफ पैं सरजमीन इब्राहिम अजीजी चया है अमरीकी सदर साबित कर असूलन तोड़े मुआहदे जो एतराम न थो करे। पाकिस्तान पैं सरजमीन त हर कीमत दहशतगर्दी खत्म कंदो। असांजे पारेसरी शिकस्त बाद प्रॉक्सीज जो सहारो वठी रहियो आहे। पाक फौज दहशतगर्दी जे खात्मे लाइ पुरजम आहे। कराची में पाक बहरिया जी पासिंग आउट परेड के खिताब कंदे वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान जी कोशिशन सां अमरीका ऐं ईरान में इस्लामाबाद मफामत ते सयूं थियूं। खिते में अमन जे क़याम लाइ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी कोशिशूं बि साराह जोगियूं आहिनि। ईरानी सदर मसूद पजान पारां पाकिस्तान जो दौरो इस्लामाबाद जे अहम किरदार जो इतराफ़ हो। खिते में थींदड़ वरियन तब्दीलनि जो असर बि जल्द ज़ाहिर थींदा। पाकिस्तान दुनिया में अमन जो अलमबरदार तौर उभरियो आहे। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जो बिन हंधनि ते ऑपरेशन 8 दहशतगर्द मारिजी विया। आईएसपीआर मूजिब खारान ऐं मस्तोंग में 25 ऐं 26 जून ते ऑपरेशन कयो वियो। खारान में ऑपरेशन दौरान 3 दहशतगर्द मस्तोंग में 5 भारतीय हामी दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी दहशतगर्द शहरनि ऐं कानून लॻंदड़ इदारनि ते हमलनि में मुलविस हुआ। समूरी दुनिया में मोटरवेज पोर्ट सिटी का शुरू थींदा। हैदराबाद कराची या सक्कर हैदराबाद मोटरवेज इन पर मुल्क की जरूरत है। सूबाई वजीर नासिर शाह चयो है सिंध के इन भेरे वफाक कुछ स्कीमूं डिनियूं आहिनि। उम्मीद है हाणे सिंध के मोटरवेज से भी ध्यान दिनो वेंदो। प्रिया कुमारी असांजी विञाणी आहे। सनत बाज़ियाबी लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। उम्मीद है वज़ीर आज़म दुनिया में सस्ते तेल पेट्रोल जो फ़ाइदो आवाम खे ॾींदो ऐं लेवीज़ बि घटाईंदो। सिंध के मुख्तलिफ़ शहरनि में 5 ॼणनि जी लाश ॿिनि जी सुञाणप न थी। दादू वेझो मेरेन जे ॻोठ मां नौजवान जो घर आॾो गोली लॻल लाश मिलियो। नौजवान सुञाणप पीर बख़्श वल्द अमीर बख़्श मरी तौर थी। ठुल मां गुम ॼाणायल नौजवान मिठल बुलडो जो बि वाह मां लाश मिलियो। नौजवान गुज़िरियल ॾींहुं घरां निकिरण बाद गुम थी पियो हो। रतो देरो भरिसां होटल ते पोरियो कंदड़ नौजवान जो लाश हथ पुलिस मौजिब पहुती पियो। बशीर भुट्टो होटल ते कमु कंदो हो। सन भरिसां पिंड साहिबे तां नामालूम शख़्स जो कपिड़नि खां आजो लाश हथ सुञाणप न थी। नौशर फिरोज़बाद सां बि क़ौमी शाहरा पीरसन जो लाश सुञाणप न थी।
2: मुसलसल समीना चयन त उन्हनि जी पुठियुनि ताईं पाणी पीअण जे लाइ न आहे। पटी पकड़ माण्हू उहे मरंदा। असांखे 3 महीननि खां वठी पाणी न आहे मिलियो।
1: सिंध मुख़्तलिफ़ शाखनि ऐं वाहनि में पाणी जी शदीद खोड़ बरक़रार। आबादगार सरापा एहतजाज। जमाल शाह जे मीर रुकण शाख जे आबादगार जो पाणी कोट ख़िलाफ़ कोडरूं खणी एहतजाज। खोरवा जे चोरवा शाख जे आबादगार जो पाणी कोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। झोल जे शाहूवा जे पुतली जे आबादगार जो पाणी कोट ख़िलाफ़ सांगर रोड ते धरणो। अठहठि मोरी भरिसां जाम लगारी शाख जे पुतली में पाणी जे कोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। सन ऐं मांझत में पाणी कोट ख़तम न थी आबादगारनि जो एहतजाज। कराची जे तरत में बीआरटी करप्शन केस जी ॿुधणी। जवाबदार ज़मीर अबासी वधीक 4 ॾींहनि जो जिस्मानी रिमांड ते एंटी करप्शन हवाले। ॿुधणी दौरान अदालत जांच आफ़ीसर खां सवाल कयो त जवाबदार जो बयान खे रिकॉर्ड जो हिसो बणायो वियो आहे या न। जांच आफ़ीसर ॿुधायो जवाबदार ज़मीर अबासी जे बयान खे रिकॉर्ड जो हिसो बणायो वियो आहे। ॿुधणी दौरान जवाबदार ज़मीर अबासी अदालत खे ॿुधायो त ख़बर नाहे छो संदसि फैमिली जा बैंक अकाउंट्स ऐं ॿिया तफ़सील छो तलब कया पिया वञनि। मनसूबे जो कंसल्टेंट बि हिकु वफ़ाक़ी वज़ीर जो वेझो माण्हू आहे। छा मां रोक रक़म खणी भॼी पियो आहियां। अदालत केस जी ॿुधणी 1 जून ताईं मुलतवी करे छॾी।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर। होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
4: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ
5: 93 double 0 double 3 8 double 5 6 9 93 double 0 double 3 8 double 5 6 9
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजे एड्रेस तो बुदा
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 0301-399-2836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: हलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई
2: 3592 0 3 0 7 3 5 9 2 1 2 0 असलाम वालेकुम अदा वालेकुम असलाम अदा छो परेशान आहीं अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो छा कजे अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई न अदा यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी हा अदा जल्दी कर मूंखे मुंहिंजी एड्रेस त ॿुधायो ऑफिस जीअं मेरापुर FM 94
3: मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8743
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94।

0: पंद्रहीं सदी अॼु अली जो नालो वठणु ॾाढो ॾुखियो आहे, पर फ़क़ीरनि त मर्कज़ी अली खे कयो आहे. भला चवंदा आहिनि पना अलाह खां वठो, पर फ़क़ीर साईं जो कलाम तव्हांजी ख़िदमत में नानक साईं जो उहो जदो अलीअ खां अमान वठो ई पनाह वठो.
1: अली बि अमान हो.

ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ

Let's go.

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन
1: कंपैरेटिव फिगर देखें तो सात परसेंट कमी है पिछले।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: क्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03-00-00-27-234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03-01-38-65-453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03-00-32-04-372 ऐं 02-42-46-01-00।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
7: 03-01-399-2836
8: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

पारूं सूरजूं हिकु लहज़े मंझलटे।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: अमेरिका ऐं ईरान जो हिक ॿिए जे दिफ़ाई मगनि खे निशानो बणाइण जी दावा। अमेरिकी सेनका मूजिबि ईरान जे ड्रोन ऐं मिज़ाइल स्टोरेज ऐं साहिली रिडार्स खे निशानो बणायो वियो आहे। अमेरिकी कार्यवाही ईरानी ड्रोन हमले जो ताक़तवर जवाब हो। ईरानी बाज़ारनि इनकलाब जी अमेरिकी हमला नाकाम बणाइण जी दावा। बाज़ारनि इनकलाब चयो आहे त ईरानी बहरिया ऐं फज़ाइया सरक्षर ते अमेरिकी हमले खे नाकाम बणायो आहे। जवाब में ईरानी फ़ौजी ख़िते में मौजूद अमेरिकी अॾनि खे निशानो बणायो। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस पारां तशदुद जवाब तशदुद ज़रिए ॾियण जी धमकी। जे डी वेंस चयो आहे त जंगवदी मुआदे ते ईरान खे सयूं करण बाद इज़त ॾिनी आहे। ईरान खे मुआदे ते इख़्तिलाफ़ आहिनि त सिधी रीति ॿुधाए सघनि था। ईरान अमेरिकी हमलनि खे मुआदे जी भञकड़ी करार ॾेई छॾियो। ईरानी परॾेही वज़ारत चयो आहे त विच ओभर जा मुल्क अमेरिका ख़िलाफ़ पंहिंजी सरज़मीन इस्तेमाल थियण न ॾियनि। इब्राहिम अज़ीज़ी चयो त अमेरिकी सदर साबित कयो त हू उसूलनि तोड़े मुआदे जो एतराम नथो करे। बहरैन ईरानी ड्रोन हमलनि जी तस्दीक करे छॾी। हमला ख़ुदमुख़्तारी ख़िलाफ़ ऐं मुआदे जी भञकड़ी करार। बहरैनी हुकूमत जारी कयल बयान में चयो आहे त ईरानी ड्रोन हमला ख़िते में जारी अमन कोशिशुनि जे लाइ नुक़सानकार आहिनि। बहरैन खे पंहिंजी ख़ुदमुख़्तारी ऐं इलाइक़ाई सलामती ऐं दिफ़ा जो हक़ हासिल आहे।
1: पार्लियामेंट्री जी तव्हां साहब आप कर लेंदा।

पाकिस्तान पंहिंजी सरज़मीन तां हर क़ीमत ते दहशतगर्दीअ खे ख़तम कंदो। असांजो पारेसरी शिकस्त बाद प्रॉक्सीज जो सहारो वठी रहियो आहे। पाक फ़ौज दहशतगर्दी जे ख़ात्मे जे लाइ पुरअज़म आहे। कराची में पाक बहरी अॾी पासे गॉड परेड खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान जी कोशिशुनि सां अमेरिका ऐं ईरान में इस्लामाबाद मुफ़ाहमत ते सहियूं थियूं। खिते में हुन जे क़याम जे लाइ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जूं कोशिशूं बि साराह जोगियूं आहिनि। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान पारां पाकिस्तान जो दौरो इस्लामाबाद जे अहम किरदार जो एतिराफ़ हो। खिते में थींदड़ वॾनि तब्दीलियुनि जो असर बि जल्द ज़ाहिर थींदो। पाकिस्तान दुनिया में अमन जो अलमबरदार तौरु उभरियो आहे।

सिंधी समी में बजट ते बहस दौरान सूबा वज़ीर ऐं हुकूमती एमपीएफ जी एमकेएम वफ़ाक़ी हुकूमत ते तनक़ीद। सूबा वज़ीर सैयद नासिर शाह चयो त समूरी दुनिया में मोटरवे पोर्ट सिटी खां शुरू थींदा आहिनि। हैदराबाद कराची सखर हैदराबाद मोटरवे सिंध न पर समूरे मुल्क जी ज़रूरत आहे। एमकेएम जे तलहा अहमद चयो त सूबनि जी ॻाल्हि त मुल्की आइन में शामिल आहे, नए सूबे जी ॻाल्हि खे गदारी चवण मुनासिब न आहे। एमपीए जमीर सुमरो एमकेएम ते जवाबी वार कंदे चयो त सिंध बम्बई बेकरी जो केक नाहे जो तव्हांखे कराची कटे धार करे ॾियूं।

0: मुसलसल ॿ महीना थिया आहिनि त उन्हनि जी पुछड़नि ताईं पाणी पीअण जे लाइ न आहे, पखी पकड़ माण्हू वञी मरंदा।
1: असांजे ॿिनि महिननि खां वठी पाणी न आहे मिलियो।
2: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शाखनि ऐं वाहन में पाणीअ जी शदीद खोट बरक़रार। आबादगार सराप एहतजाज। जमाशाह आजीवी रुकण शाख जे आबादगारनि जो पाणी जी खोट ख़िलाफ़ कोरड़ूं खणी एहतजाज। खोरवा जे चोरवा शाख जे आबादगारनि जो पाणी जी खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। झोल जे शाहूआ जी पुछड़ी जे आबादगारनि जो पाणी जी खोट ख़िलाफ़ सांगर रोड ते धरणो। अठहठि मोरी फसां जाम बिगारी शाख जे पुछड़ीअ में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। सन ऐं मांझनि में बि पाणी जी खोट ख़तम न थी, आबादगारनि जो एहतजाज। कराची जी अदालत में बीआरटी येलो लाइन करप्शन केस में गिरफ़्तार जवाबदार ज़मीर अब्बासी जे जिस्मानी रिमांड में चइनि ॾींहनि जी वाध। ॿुधणी दौरान अदालत जांच अफ़सर खां सवाल कयो त जवाबदार जे बयान खे रिकॉर्ड हिसो बणायो वियो आहे या न। जांच अफ़सर ॿुधायो त जवाबदार ज़मीर अब्बासी जे बयान खे रिकॉर्ड हिसो बणायो वियो आहे। ॿुधणी दौरान जवाबदार ज़मीर अब्बासी अदालत खे ॿुधायो त ख़बर न आहे छो संदसि फैमिली जा बैंक अकाउंट्स ऐं ॿिया तफ़सील तलब कया पिया वञनि। मनसूबे जो कंसल्टेंट बि डेप्यूटी सेक्रेटरी जो भाउ आहे, छा मां रोक रक़म खणी भॼी वियो आहियां। एंटी करप्शन जो ज़ोर रुगो हथकड़ी लॻाइण ते आहे। अदालत केस जी ॿुधणी 1 जुलाई ताईं मुलतवी करे छॾी।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
4: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 and 02424601000।
6: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307 3592120।

0: माना निर्लते
1: जी
0: ये खणी चे जे न सडे पासे दो खबे दो
1: खबे पासे दो
0: उमर घणिया उमर 22 साल माशाल्लाह अल्लाह ताई खुश रखंदो सेहत रिंदो यंग आयो नौजवान आयो बुधो एफएम बुधो डॉक्टर साहब के बुधाय तो न त रूबरू दिखारे वणो बाबा ठीक है मुजा साई मेहरबानी मेहरबानी जी डॉक्टर साहब
2: बिल्कुल इन उम्र में इन सूर की कंडीशन जहाँ खोड़ सारा असबाब थी सकता एक तो असि रोजाना मोबाइल यूज क्यों सारी सारी रात जो है सो उन जागूँ था उन निंड सही पूरी न होजन के करे अजकल जो नौजवान में इशूज काफ़ी सारा थे खास कर निंड न होजन जहा मथे में सूर रहने जा नज़र की कमजोरी वेसर जो होजन यो जो है सो वो सारो मसलो निंड जो सही न होजन है उन बिया भी खोड़ सारा असबाब थी सकन था कमजोरियों तो बहरहाल देखे यो ही चंदासी छो एज नंढी है एक तो आराम दे पाँ खास कर ज्यादा ध्यान दियन उन इन जो जल्द अज जल्द ट्रीटमेंट इलाज थिए तो वह बेहतर रहो इलाज होम्योपैथिक दवाओं के रस्ते असा सो रूबरू दिखारे सकता उन वरी बेहर अदे चंदुस तो पानी जो इस्तेमाल ज्यादा करें निंड जो सो ज्यादा जो सो पाँ टाइम से करें उन खाद खुराक जो ख्याल करें बादाम रोजाना सत दाना पानी में पिसाए रखें सुबह जो नेराने जो इस्तेमाल करें उन काफ़ी सारो वफाक अचे
0: प्रोग्राम है सेहत की गाल जी मेहरापुर एफ एम 94 जो आवाज़ अवे समात पहुंचे पो प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब असाजे स्टूडियो में मौजूद जी मुख्तलिफ़ बीमार बाबत जान दई रहा अवं सभी सजन के असे प्रोग्राम में भलीकार चूं था 0301-9196-8151 कदें भी मायूस ना थियण का भी बीमारी ला इलाज ना डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब वेठो है इलाज कह शिफा दियण वाली जात अल्लाह ताला की है अवं गुर्दे में पथरी आ पिते में पथरी आ मसाने की पथरी आ उनमें अवे कदें भी मायूस ना थियणो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो दादी मुख्य जो पे कॉलर हो डॉक्टर साहब चे मुझे मास लही तो पे सुठी गाल बीमारी है उनके कदें भी लिखण न घुर्ज
2: जी बिल्कुल
0: उनके लिखण न घुर्ज उनको तुम इलाज करा बर वक्त इलाज करा तो जी बुखार थी है डॉक्टर साहब मानू पे उनके बुखार ना समझंदा इलाज ना कराइंदा प्रॉपर तरीके से पे चवन था ही टेबलेट खाऊं था वरी चवन था ही खाऊं था टे ढी गुजरी आ चार ढी गुजरी आ पंज ढी अड़ी तरह अठ ढी गुजरी आ जै ढी दह बारह ढी बुखार के गुजरंदा तो वो आम बुखार वे बुखार में तब्दील
2: बिल्कुल
0: वो नतीजो है वे बुखार में कि तब्दील थो जो अस पे उनको इलाज प्रॉपर तरीके से न कयोसी
2: बिल्कुल सही
0: टे ढी बुखार की लिमिट होंगी है भाई टे ढी बुखार रही सके तो तुम इलाज करा तो बुखार एक कें तकलीफ जो इलामत होंगी है तक छड़े वे तो जी तक वो बुखार जो हों अक्सर कर डॉक्टर साहब इन तो भी थोड़ी नजरसानी कर अजकल गर्मी में बुखार घना थन्दा मानुन के वो बुखार भी जो घो ही अक्सर थन्द है
2: बिल्कुल
0: इन चवन आंड्रे में मन जख्म हों सिर्फ कश खाओ सिंधी बराड़ी में ये
2: बिल्कुल एक्चुअल हूँ भी इो ही दस्तूर है जैसे थोड़ा घड़ो थो मू सेल्फ मेडिकेशन के तरफ वेंदा यानि पा मुरादो जो है सो दवा कराइन स्टोर से वेंदा ही है तकलीफ ये मिसाल डिस्प्रिन दियो बोरी खाई छदूँ पेनाडोल खाई छी फलान खाई छी डिस्प्रिन बोरू खाण से या अड़े किस्म के इलाज कर खबर है तवजो मादो तमाम मुतासर थी सके तो उनमें अल्सर थी सके थी लेकिन जैसे यही दवा पाँ डॉक्टर के दिखारे कर डायग्नोस या जो अदरवाइज को बो इलाज कें डॉक्टर के दिखारे कें जानू मणु के दिखारे उनखा जो वो तो वो अवज इलाज सजाया इन सेहत मुतासर न थी लेकिन वरना अड़े तरीके से इलाज कर अजकल दवाओं जो हुई भी साइड इफेक्ट तमाम घना बो नुकसान थी सके तो गाल कजें वे बुखार की तो वो बुखार अस यानी अगर याद हों कुछ टाइम अगे गाल भी होसी तो जो मू सफाई सही पाँच नो कर टाइफाइड उनके टाइफाइड थी वो है यानी दसो जो मू बाथरूम वॉशरूम कर आयो उन्हें सही हैंडवॉश न किया यो जो जरासीम हों टाइफाइड रॉट यो इतो ही जो है सो पैदा थो वही आंड्रे में जख्म कहें इन बीमारी से इन बीमारी के वी वजन से मौत भी वाक़ थी वो है यानी असानी नंढड़ी गफलत जी गाल पे पाँच सफाई करण घुर्जे उन ॾिसो, ही जेके असां वटि जेके बि शहर में जेके पकौड़ा समोसनि जा गाॾा या जेके मिसाल हिकिड़ो आइसक्रीम वग़ैरह या अहिड़े क़िस्म जा गाॾा जेके हूंदा आहिनि, त शहर में मखियुनि जा अंबार बि लॻल आहिनि, गटरनि जे भरिसां नालियुनि जे भरिसां हूंदा आहिनि। पोइ उहे मखियूं जेको आहे उतां गंदगी तां वेही करे या जेके जलेबियूं वग़ैरह अहिड़े क़िस्म जी शयूं आहिनि उन्हनि ते अची ऐं पोइ वरी उहे जेको आहे सो वेहंदियूं आहिनि, उहो जरासीम उन्हनि में ट्रांसफर थी वेंदो आहे। ऐं वरी जॾहिं उहे माण्हू जॾहिं दवाऊं माण्हू खाईंदो आहे सो शयूं खाईंदो आहे, उन मां उहो जेको आहे सो इन्फेक्शन थींदो आहे। मुल्क जो वॾे में वॾो बादशाह सिकंदर जेको आहे सो बादशाह, उनखे बि इहो ई जरासीम थियो हो टाइफीडोट, जंहिंसां हू जेको आहे सो मौत उनजो वाक़िए थी वियो। त इहे हिकिड़ियूं नंढड़ियूं गफ़लतूं आहिनि, इन जे करे पंहिंजो पाण खे प्रोटेक्ट रखण जे लाइ थोरी घणी पंहिंजी केयर तमामु करणु ज़रूरी हूंदी आहे। जॾहिं बि तव्हां घरनि में अॼुकल्ह ॾिसो जेको आहे सो खाधो वग़ैरह खाओ था, त तव्हांजा खुलिया ई रहंदा आहिनि या कीअं, त उन्हनि ते जेको आहे सो मखियूं अची वेंदियूं आहिनि, त उहे जेको आहे सो उन सां उहो जरासीम उते अची सघे थो ऐं तव्हांजी सिहत मुतासिर थी सघे थी। इन जे करे जेको आहे सो जेको बि तव्हां खणो थो उनखे वॉश करे ऐं इस्तेमालु कयो, ऐं कुझु जॾहिं बि का शइ खाओ त हैंड वॉश करे ऐं पोइ जेको आहे सो इस्तेमालु कयो, त उन सां तव्हांजी सिहत बहितर रही सघे थी। वरना जेको आहे सो इहो जॾहिं जॾहिं इहो जीवड़ो जिस्म में दाख़िल थी वञे थो, त पोइ तमामु तेज़ जिस्म में सूर ऐं तेज़ बुखार बार बार अचणु ऐं ख़ासि करे राति जे टाइम में अचणु ऐं उन खां पोइ गलो मुतासिर थी सघे थो, ॿिया इंसान जा आज़ा मुतासिर थी सघनि था, ऐं पोइ इहा तकलीफ़ तव्हांखे जेको आहे सो वधी सघे थी। अॻिते हली जीअं मां पहिरीं ॻाल्हि कई, त पोइ यानी माण्हू जो मौत बि वाक़ई थी सघे थो। इन जे करे पंहिंजो पाण खे जेको आहे सो ज़रूरु जेको आहे सो केयर कंदा कयो, ऐं अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो उन खां अलावा ख़ुदि ख़ुदा जी कुदरत जूं होर सारियूं शयूं असां वटि भाॼ सब्ज़ियूं थधियूं सब्ज़ियूं हिन वक़्तु हिन मौसम जे हवाले सां मौजूदु आहिनि। कद्दू आहे या साई तूरी आहे, उहा इस्तेमालु करे सघो था। आल फ्रूट्स जेके बि आहिनि, माशाल्लाह अल्ला ताला जी देन आहे। हिन ही जेकी मौसम आहे हिन में त अल्ला ताला जेको आहे सो असांजे लाइ ही तोहफ़ा ही तोहफ़ा जेको आहे सो मोकिलिया आहिनि, ऐं असांखे उन मां मुफ़ीद फ़ाइदा वठणु घुरिजनि। जीअं मां गुज़िरियल प्रोग्रामनि में वंगे जे बारे में ॿुधायो, फारवनि जे बारे में, या आलू बुखारा आहिनि, पपीतो आहे, ही हिकिड़ियूं कुदरती शयूं मौजूदु आहिनि। ॼमूं अॼुकल्ह आहिनि, इन्हनि मां भरपूर तव्हां फ़ाइदो वठी सघो था। इहे नंढियूं ॾिसण में शयूं आहिनि, लेकिन इन्हनि जा फ़ाइदा तमामु यूनिक आहिनि अव्हांजे मादे ते, जिगर ते, अव्हांजे जिस्म जे लाइ। हीअ हिकिड़ी क़िस्म जी ख़ुराक आहे। अव्हां असांजे जिस्म खे अॼुकल्ह ॾिसो, जीअं अधु हिकिड़ी ॻाल्हि कई त जिस्म में सूरु रहे थो, त इहे छा आहिनि? इहे असांजे जिस्म में हिकिड़ियूं कमियूं आहिनि जेके जंहिंजे करे, यानी कैल्शियम जी कमी आहे, विटामिन डी जी कमी आहे, विटामिन बी ट्वेल्व जी कमी आहे, आयरन जी कमी आहे, जंहिंजे करे असांजे जिस्म में इहे तकलीफ़ूं पैदा थियनि थियूं। पर जेकॾहिं हीअ इहे ख़ुराकूं आहिनि, ग़िज़ाऊं आहिनि, ऐं इन्हनि ख़ुराकनि ऐं इन्हनि ग़िज़ाउनि में ई जेको आहे सो कैल्शियम मौजूदु आहे, विटामिन डी मौजूदु आहे, विटामिन बी ट्वेल्व मौजूदु आहे, बी कॉम्प्लेक्स मौजूदु आहे, आयरन मौजूदु आहे, मैग्नेशियम मौजूदु आहे। त तव्हां जेकॾहिं इहे शयूं इस्तेमालु कंदो, त तव्हांखे कंहिं बि डॉक्टर ॾे वञण जी ज़रूरत न पवंदी। वरना ज़ाहिर आहे, जंहिं बि डॉक्टर वटि वेंदो, त पछाड़ी उहाखे ड्रिपनि जी सूरत में, इंजेक्शन जी सूरत में इहे ई विटामिन्स जेको आहे सो लॻंदियूं, ऐं पोइ तव्हांजा ख़र्च बि तमामु ज़्यादा थींदा। ऐं वरी उन्हनि जा साइड इफ़ेक्ट्स बि तमामु घणा आहिनि। इन जे करे तव्हां पंहिंजे सिहत जो ख़्यालु रखो, ऐं इहे कुदरती शयूं जेको आहे इस्तेमालु कयो। वॾी महिरबानी
0: दोस्त। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेकी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। डॉक्टर साहिब जो ख़ासि महिरबानियूं आहिनि, मुहबतूं आहिनि, जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे ईंदा आहिनि असांजे स्टूडियो में। 0301-96-8851 ते तव्हां लाइव कॉल प्रोग्राम में कॉल करे लबज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था। 0301-96-8851। डॉक्टर साहिब हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछर, आचार ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड महरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। का बि बीमारी लाइलाज नाहे, हेपाटाइटिस बी, सी, जिगर जी बीमारी हुजे या जेके बीमारियूं आहिनि, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाज कंदा आहिनि। शुगर आहे, ब्लड प्रेशर आहे, दिलि जा मर्ज़ आहिनि, फालिज आहे, टीबी आहे, ख़ारिश आहे, फट, फुरड़ियूं, ॿारनि जो कदु नथो वधे, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाज कंदा आहिनि। 0301-91-8851 लाइव कॉल जो नंबर आहे। हीअ कॉल असांखे कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, कॉल जी तरफ़ ईंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम चारा सर, डॉक्टर मां मशवरो वठो आहे।
0: जी जी,
3: मुंहिंजी 6 साल थी आहे अखियुनि जी, माना जेका थो नाबीना पत वधंदी वञे पई आहे, धुंधला थो नज़र अचे थो मूंखे। मां रियासत थो ॻाल्हायां,
0: पंहिंजी डॉक्टर साहब वटि हलिया अचो, डॉक्टर साहब खे ॾेखारियोसि।
3: इहो कराची में ॾेखारियो आहे ऐं अलब्राइम कराची में ॾेखारियो आहे, लखनऊ में ॾेखारियो आहे, पर उन लाइलाज करे छॾियो मूंखे। माना उन्हनि चयो था दिमाग़ जी जेके रगू आहिनि पोइतो लाइट नथी अचणु चाहे,
0: बीमारी ला इलाज न आहे, कॾहिं बि मायूस न थियो। ईअं ई आहे, इहो ई इन्हनि जेके वॾियूं वॾियूं इस्पतालूं आहिनि, इन्हनि मां मरीज़ लाइलाज थी करे डॉक्टर साहब वटि अचनि था, अलाह ताला जे हुकुम सां रिज़ल्ट मिले थो। नौजवान आहियो, हिकिड़ो डॉक्टर साहब मुंहिंजो अखियूं ॾिठो, मूं पाण जो तजुर्बो थो ॾिसियां। ऐं बि डॉक्टर साहिब वटि उते वेंदो आहियां क्लिनिक ते, ऐं इवन वकील आहियां, पर वेंदो आहियां डॉक्टर साहिब जी क्लिनिक ते चकर हणंदो आहियां। पर ॻाल्हि इहा आहे त उते हिकिड़ो खैरपुर जो पेशंट, खैरपुर जे ॿाहिरां पिरियालो आहे, पिरियाले खां डॉक्टर साहिब वटि मरीज़ ईंदो, एजड माण्हू 65 साल जो, उन खे रिज़ल्ट मिलंदो, पाण ॿुधाईंदो त साईं मूंखे रिज़ल्ट मिलियो आहे। सफ़ा वेठल वीचारो, ॾिसी न सघंदो, बसि रुॻो हां जे सोचे ते हलण वारो, माना उनजी बि ईअं अचानक वेहिजी वियो उहो बि। ऐं बिल्कुलु एग्ज़ेक्ट तव्हां जेकी ॻाल्हि कई आहे न, तव्हांजी नज़र इन जे करे जेके दिमाग़ जूं रगूं आहिनि उहे जॾहिं वीक थी वञनि थियूं, कमज़ोर थी वञनि थियूं, उन्हनि जो ई तालुक हूंदो आहे नज़र सां। अच्छा, छा फ़र्क़ु कंदा आहिनि? जिस्म फरके थो न, बिल्कुलु को मसलो ई न आहे। तव्हां हलिया अचो, अलाह असांजी ज़ात शिफ़ा ॾियण वारी आहे। तव्हां महीनो, 2 महीना, 3 महीना दवा इस्तेमालु जॾहिं कई न, तव्हां पहिरियों रुॻो महीनो हिकु दफ़ो डॉक्टर साहिब जी दवा इस्तेमालु कई, अलाह में उमेदु आहे तव्हां पाण वरी प्रोग्राम में कॉल करे ॿुधाईंदव त साईं मूंखे हेतिरो रिज़ल्ट मिलियो
3: आहे।
0: बाक़ी आहे अखियुनि जो मसलो, ॾिसो इहो को 2 ॾींहनि में 3 ॾींहनि में माना न आहे हिकिड़ो रिकवर थियणो या कीअं। डॉक्टर साहब खे रूबरू अची ॿुधायो, तव्हांजी मादे जी तकलीफ़, तव्हांजी साणाई, तव्हांजे अखियुनि जो मसलो, अलाह ताला जी ज़ात शिफ़ा ॾियण वारी आहे, अलाह ताला में भरोसो रखी सुभाणे ई हलिया अचोसि। आचर वारे ॾींहुं, जुमे वारे ॾींहुं, छंछर वारे ॾींहुं, यानी हफ़्ते जा 3 ॾींहं चेकअप फीस डॉक्टर जी फ्री आहे, अव्हांखे दवा बाक़ी वठणी पवंदी। उहो बि तव्हांखे टोटको बि ॿुधाए थो, इहो टोटको ॿुधाए थो, पर तव्हांजो जेको हल आहे न, ॾिसो तव्हां इहो लाइलाज थियल, हाणे लाइलाज खे फस्ट एड उनखे ॾिबी आहे, टोटको उनखे ॿुधाइबो आहे जेके माना हिकिड़ो नारे में वेठो आहे, तव्हां ठरीमीरो आहे जे कंहिं ॿराड़ी जे इलाइक़े में ठाहियो, जिते इस्पताल तव्हां खां परे आहे, मिसाल थो ॾियां पियो, कुझु तव्हांखे थी वियो, हाली तव्हांखे माण्हू बाबा उन वक़्तु ते वठी करे कुझु ॾिनी, कंहिं मरीज़ खे फ़र्क़ु मिली वियो न, फ़र्क़ु पवंदो न पवंदो, उन हिसाब सां इहे टोटका हूंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ। ईअं सम्झो इहे ॾस बि घणा माण्हू ॾस जेके बि सिहतमंद थी ठीकु थी वेंदा आहिनि, पाण ॿुधंदा आहियो प्रोग्रामनि में अची ॿुधाईंदा आहिनि, साईं असां तव्हांजे इन ॾसनि जे करे एतिरो दफ़ो असांखे फ़ाइदो मिलियो आहे। बाबा निंड ईंदी न तोखे, तूं इलाज त इलाज करां, इलाज प्रॉपर करां, प्रॉपर इलाज करां, जीअं डॉक्टर चयो ईअं कजांइ, जेको आहे महीने खां पोइ वरी मूंखे ॿुधाइजांइ। वधीक एफएम बुद्ध डॉक्टर साहब तांखे बुधाए दो ठीक आ साईं
3: ठीक आ सर
0: मेहरबानी भलीकार प्रोग्राम में कॉल करण जे लाए मेहरबानी डॉक्टर साहब साईं सा प्रॉब्लम ता है ठरमीरो जो दोस्ता ऐं हिन खे अखियुनि जो मसलो हिक नौजवान उमिरि जेको आहे सो 37 साल घणी बिल्कुलु बि कान्हे का ऐं ॾिसो माना जिस्म जो फ़र्क़ु करण दिमाग़ जी एॾी कमज़ोरी आहे जो माना उहो रगूं ब्लॉक थी वियूं आहिनि जंहिंजे करे नज़र वीक थी वई आहे वेझी वई आहे डॉक्टरनि जेको आहे सो कराची जे बि कंहिं जेको आहे इस्पताल प्राइवेट इस्पताल ख़ैराती इस्पताल या कंहिं पिरनि जो नालो खयों कंहिं साईं डॉक्टर साहिबु उनजो बि जेको आहे सो ॾिसो माना उतां लाइलाज थी वियो पर आउं त हमेशह चवंदा आहियूं भई का बि बीमारी लाइलाज न आहे मूंखे मायूस न आहे थियणो हाणे इन जे बारे में कोई दोस्त खे ॿुधायो
2: बिल्कुलु दोस्त अंग्रेज़ी इलाज खां लाइलाज थियो आहे लेकिन होम्योपैथिक में उनजी ट्रीटमेंट जेको आहे सो मौजूदु आहे ऐं शिफ़ा अलाह ताला जे हथ में आहे चाहे पोइ उहो कहिड़ो बि इलाज कराए जेकॾहिं जितां उनखे कख मां बि शिफ़ा मिली वेंदी आहे जेकॾहिं शिफ़ा मिलणी हूंदी त ज़रूरु मिलंदी असां ईअं न चवंदा आहियूं त असां वटां अव्हांखे फ़ाइदो पवंदो या शर्तिया इलाजु आहे इहो शर्तिया इलाजु असां कॾहिं बि कंहिंखे बि न चयो आहे ऐं अहिड़े क़िस्म जा ईंदा आहिनि ऐं पोइ जॾहिं हू असां हुनखां इनकार कंदा आहियूं पर जॾहिं दवा वठी ईंदा आहिनि त हुननि खे फ़र्क़ु पवंदो आहे त पोइ अॻिलो चवंदो आहे तव्हां शर्तिया पोइ चई सघो पिया पर असां चवंदा आहियूं त न इहो शिफ़ा अलाह ताला जे हथ में आहे इन जे करे चाहे उनखे फ़ाइदो पइजी बि वञे पर वरी बि असां इहा ई चवंदासीं त शिफ़ा जॾहिं हुनखे जॾहिं मिलणी हूंदी जेकॾहिं असांजे वटां हुनखे शिफ़ा मिलणी आहे त मिलंदी बाक़ी दवा ते असांजो अलाह जी ज़ात ते यकीन हूंदो आहे ऐं दवा ते यकीन हूंदो आहे त दवा जो को साइड इफ़ेक्ट कोन्हे ऐं दवा बेज़र आहे छो जो जेके ॿियूं दवाऊं आहिनि उहे केमिकल्स मां तयारु थींदियूं आहिनि असांजूं दवाऊं कुदरती पौधनि मां कुदरती शयुनि मां तयारु थींदियूं आहिनि जंहिंजे करे हुनजो को साइड इफ़ेक्ट ई न आहे ऐं असांजो जीअं मां ॻाल्हि कई त असांजो तव्हांखे ख़बर पिया सभिनी खे आहे त 25-30 साल खां वठी असां हिन फील्ड में आहियूं ऐं एतिरनि सालनि में अहिड़े क़िस्म जा खोड़ सारा केस असां वटि अची चुका आहिनि ऐं उन्हनि खे जिन खे फ़र्क़ु पवंदो आहे त ज़ाहिर आहे त असां उहे ई मेडिसिन्स जेके असांजे पंहिंजे तजुर्बे में हूंदियूं जिन खे ॾेई चुका हूंदासीं नओं तजुर्बो को या अहिड़े क़िस्म जो को बि तजुर्बो असां पेशेंट ते न कंदा आहियूं जो हरु भरु अके अॻिले जो वक़्तु बि ज़ाया थिए ऐं पैसो बि ज़ाया थिए जेकी हिकिड़ी शइ पाण खे यकीन हूंदो आहे उहा ई शइ पेशेंट खे ॾींदा आहियूं वधीक वरी बि इहा ई आख़िरी पहिरीं ॻाल्हि ऐं आख़िरी ॻाल्हि त शिफ़ा अलाह ताला जे हथ में आहे आयो सुवाल देसी टोटकनि जे हवाले सां त बिल्कुलु उहे बि कुदरती शयूं ई आहिनि साॻियूं उहे बि ॾींदा आहियूं लेकिन जीअं मां उनखे ॻाल्हि की त हिकिड़ो पेशेंट लाइलाज थी चुको आहे त उनखे इन सां गॾोगॾु इहो नथो चयो त इहो इस्तेमालु न करे को बि देसी टोटको लेकिन इलाज बि तमामु ज़रूरी आहे दवा बि ज़रूरी आहे कुझु दवा बि आहे कुझु दुआ बि आहे अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो जीअं इन हवाले सां आदे खे ॿुधाईंदासीं जेकॾहिं नमाज़ पढ़ंदो आहे त मां त चवंदुसि नमाज़ पढ़े 5 वक़्तु नमाज़ पढ़े हर नमाज़ खां बाद में आङुरियुनि ते 11 दफ़ा या बसीरू पढ़ी ऐं जेको आहे सो दम करे ऐं उहो अखियुनि ते घुमाए हीअ हिकिड़ी कुदरती जेको आहे सो तोहफ़ो आहे जेको कंहिं बुज़ुर्गनि जे तरफ़ां बि असांखे मिलियल हूंदो आहे उहो बि असां शेयर कंदा आहियूं त उन सां बि हिकिड़ी जेको आहे सो अव्हांखे शिफ़ा मिली सघे थी क़ुरान शरीफ़ में सूरह नूर आहे उहा बि अव्हां पढ़ी सघो था रोज़ाना पढ़ी दम करे ऐं पी बि सघो था अखियुनि ते हणी बि सघो था सौंफ़ बादाम ऐं मिस्री अदधु भाउ वठी करे उहो सफ़ूफ़ करे उन में 10-15 दणा सुफ़ेद मिर्च जंहिंखे दुखनी मिर्च चइबो आहे सफ़ूफ़ करे विझी चमची हिकिड़ी सुबुह शाम जो आहे ज़रूरु जेको आहे सो इस्तेमालु कयो उन सां बि अव्हांखे काफ़ी सारो फ़ाइदो पइजी ईंदो ऐं अहिड़े तरीक़े सां होम्योपैथिक दवा बि आहे जेकी अव्हांखे जिस्म में फ़र्को आहे या ॾकणी आहे उनजो उहो भरगुनि जी कमज़ोरी आहे उनजी बि ट्रीटमेंट मौजूदु आहे जंहिंसां अव्हां इनशाला ताला इहो फ़र्को ऐं तकलीफ़ ख़तमु थी सघे थी वॾी महिरबानी
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी मेहरापुर FM 94 जो ही आवाज़ तव्हांजे समातुनि ताईं पहुचे पियो असांजे स्टूडियो में मौजूदु सिंध जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु डॉक्टर साहिबु तव्हां कहिड़ा कहिड़ा ॾींहुं क्लिनिक ते वेहो था कहिड़े मरीज़नि जो मर्ज़नि जो इलाजु कयो था असीं चवंदासीं पंहिंजे मरीज़नि खे असांजा जेके ॿुधंदड़ आहिनि उन्हनि खे ॿुधायो जो हीअ आवाज़ु तव्हांजो परे परे ताईं ॾिसो ठरीमीरो खां फ़ोन हुई सोबेदरे खां फ़ोन हुई राणीपुर खां फ़ोन हुई कोटड़ी कबीर खां फ़ोन हुई परे परे ताईं आवाज़ु वञे थो नारे खां चूंडके खां वठी
2: महिरबानी इहो इंडिकेट बि कराईंदा हलूं त ज़रूरी बि ॻाल्हि आहे छो जो खोड़ सारा पेशंट आहिनि छो जो को असांजो हिकिड़ो ॾींहं में ऑफ हूंदो आहे ऐं पेशंट वरी उन यानी मोकल हूंदी आहे ऐं उन ॾींहं ते वरी मरीज़ ईंदा आहिनि मिसाल अंगारे जो ॾींहुं असांजी क्लिनिक बंदि हूंदी आहे इन करे हर मरीज के यो ज़हन में ज़रूर हुजे त अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे ऐं हाणे बि काफ़ी सारा पेशंट के कंडियारो मां के मिसाल लाड़काणे मां बि हिकु अधु दोस्त हूंदी अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक ते जेको आहे सो हालांकि अंगारे जे ॾींहुं असां हिन शहर में ई मौजूदु न हूंदा आहियूं सो इन जे करे जेको आहे सो अंगारो क्लिनिक बंदि हूंदी आहे बाक़ी हफ़्ते जा छह ॾींहं जुमो छंछरु आचर सूमर अरबा ऐं ख़मीस इहो क्लिनिक ते मौजूदु आहे उनमें टे ॾींहं असां स्पेशली हिकिड़ो हर मरीज़ जे लाइ हर दोस्त जे लाइ हिकिड़ो पैकेज रखियलु हूंदो आहे चेकअप फीस फ्री जुमे जो ॾींहुं छंछरु जो ॾींहुं आचर जो ॾींहुं दवा मरीज़ जे मर्ज़ जे मुताबिक़ हूंदी आहे कंहिंजो मर्ज़ु ज़्यादा हूंदो आहे त ज़ाहिर आहे उनजी दवा ओड़े क़िस्म जी हूंदी आहे कंहिंजो मर्ज़ु नंढो हूंदो आहे त उनखे ओड़े क़िस्म जी दवा हूंदी आहे त पोइ मरीज़ खे दवा सिर्फ़ु जेको आहे वठणी पवंदी आहे ऐं अहिड़े तरीक़े सां जेका टाइमिंग अव्हांखे ख़बर आहे पहिरियां बि ॿुधाईसीं त सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो जेको आहे सो 5 बजे ताईं मौजूदु हूंदी आहे ऐं अहिड़े तरीक़े सां वरी हिकु दफ़ो ॿीहर एड्रेस अव्हांखे ख़बर आहे त साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड चेयरमैन होम्योपैथिक क्लिनिक डॉक्टर मंज़ूर मेमण ज़रूरु यादि रखिजो नंबर कॉन्टेक्ट करण जे लाइ 24 कलाक ऐं इहा हिकिड़ी अव्हांखे रिक्वेस्ट आहे त जंहिं बि पेशंट खे को ज़रूरी यानी बीमारी मुतालिक ऐं को नुस्ख़े मुतालिक पुछणो आहे त जेको आहे सो कॉल करे सघो था 0301-9196-851 ऐं उनखां पोइ जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक नाले मां अंदाज़ो तव्हां लॻाए सघो था त कोशिशि कंदा आहियूं त जेके के दोस्त ग़रीब हूंदा आहिनि त पोइ उन्हनि खे जेको आहे सो उन हवाले सां पेशंट खे दवाऊं ॾियणियूं पवंदियूं आहिनि बाक़ी कोशिशि इहा हूंदी आहे त उनखे जर्मन जो नुस्ख़ो जर्मन जो फार्मुलेशन में जर्मन जी कंपनी में मेडिसिन्स ॾींदा आहियूं त जीअं हू जेको आहे सो जल्द अज़ जल्द उन मां जेको आहे सो शिफ़ायाब थी सघनि मुख़्तलिफ़ मर्ज़ जे पहिरीं बि ॻाल्हि कईसीं कंहिंखे अधु मथे जो सूरु आहे ऐं या कंहिंजी नज़र जी कमज़ोरी आहे कंहिंखे कननि जो प्रॉब्लम तमामु घणो हूंदो आहे अॼुकल्ह कंहिंजे खोड़ सारा कननि जा बि प्रॉब्लम आहिनि कंहिंजा कन वहनि था कंहिंखे ख़ारिश आहे कंहिंखे कननि में आवाज़ ईंदा आहिनि कंहिंखे सीटियूं वॼंदियूं आहिनि कंहिंखे ॿुधण में घटि ईंदो आहे सो उनजो बि कामयाबु इलाजु अलाह ताला जी महिरबानी सां छो जो शिफ़ा ॾियण जी ज़ात उहा आहे त उन में बि जेको आहे सो ट्रीटमेंट मौजूदु हूंदी आहे जीअं नक जी हॾी वधीक कंहिंखे साइनसाइटिस असां चवंदा आहियूं या जेको आहे सो कंहिंजो गले जो प्रॉब्लम हूंदो आहे टॉन्सिलाइटिस थी वेंदा आहिनि उन जे गदूदनि जी उहा मेडिकल में तमामु ईंदो ज़ाहिर आहे उनजी ट्रीटमेंट थींदी आहे घणियूं सारियूं एंटीबायोटिक्स हूंदियूं आहिनि फ़र्क़ु न पवंदो आहे त पेशंट वणंदो जेको आहे सो इम्यूनिटी सिस्टम उनजो घटिजी वेंदो आहे कमज़ोरी थी वेंदी आहे अॻिते हली जेको आहे सो या इवन नंढा ॿार ख़ासि करे इन मर्ज़नि में मुबतला हूंदा आहिनि ऐं पोइ जेको आहे सो वरी ऑपरेशन जी नोयत ते वञी पहुचंदा आहिनि इन जे करे इन शयुनि खां जेको आहे सो पाण खे ख़ासि जेको आहे सो चवंदा कयो भई अॼुकल्ह जे मौसम में नंढनि ॿारनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो जी मिसाल या जेको अॼुकल्ह घणो माण्हू यख थधो पाणी इस्तेमालु करे थो त उहो बि गले जे लाइ त नुक़सानकार आहे ई आहे पर अव्हांजी सिहत जे लाइ बि नुक़सानकार आहे अव्हांजो जेके रगूं आहिनि उहे बि जेको बंदि थी सघनि थियूं अव्हांजो जेको आहे सो हाज़मो मुतासिर थी सघे थो इन जे करे जेको आहे सो नॉर्मल पाणी इस्तेमालु करे सघो था ऐं अहिड़े तरीक़े सां पाणी ज़्यादा इस्तेमालु कयो जेतिरो थी छो जो अॼुकल्ह जेको आहे सो हिन हीट स्ट्रोक जे करे जेको आहे सो जिस्म में डिहाइड्रेशन तमामु घणी थी वञे थी जिस्म में डिहाइड्रेशन जॾहिं थी वेंदी आहे त पोइ पेशंट जेको आहे सो बेहोश बि थी सघे थो
0: तमामु घणी महिरबानी त साईं तव्हां असांखे पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो दोस्तो इन ई ते प्रोग्राम जो बि वक़्तु पुॼाणी जे तरफ़ ई पहुचे पियो जीव आहे त जहान आहे सिहत आहे त सभु कुझु आहे पंहिंजो ख़्यालु रखो पंहिंजे सिहत जो ख़्यालु रखो मुहरम अल हराम आहे ऐं यकीननि उनजो एतराम बि लाज़मी आहे असांजो FM जेको 94 आहे मेहरापुर ख़ासि तौर ते असीं अवॉइड कंदा आहियूं त जीअं म्यूज़िक बंदि रहे ऐं शुरूआती ॾींहंनि में कुझु फ़क़ीराणो म्यूज़िक वग़ैरह सुफ़ियाणो सांग वग़ैरह हलाए सघूं था उहे हलंदा आहिनि या प्रोग्रामनि में बि कोशिशि करे म्यूज़िक बंदि कयो वञे ऐं जेके मुहरम जा 3 ॾींहं हूंदा 8, 9 ऐं 10 मुहरम अलहरम उन्हनि में बिल्कुलु म्यूज़िक बंदि कयो वेंदो जीअं मेहरापुर FM जे तरफ़ां इन ते अॼु प्रोग्राम जो वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते ॿिए प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान हाकिम अली जिस्कानी खे इजाज़त अलाह निगहबान अलाह वाह

इतिहास खे निशान बनाए वो है। अमेरिकी कार्रवाई ईरानी ड्रोन हमले जो ताकतवर जवाब हो। ईरानी पासदारन इनकलाब जी अमेरिकी हमला नाकाम बनाने की दावा। पासदारन इनकलाब ईरानी बहरिया ए फजाया शरीक शहर से अमेरिकी हमले के नाकाम बनाया है। जवाब में ईरानी फौजी खिते में मौजूद अमेरिकी अड्डन के निशान बनाया है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस पारा तशद्दुद जवाब तशद्दुद जरिए देने की धमकी। जेडी वेंस चवाए जंगबंदी वायदे से ईरान के सयू करण बाद इज्जत दिनी है। ईरान के वायदे से इख्तिलाफ आन तो सीधी रीत बुझा सकन था। ईरान अमेरिकी हमलन के वायदे की भंजकड़ी करारे छो। ईरानी परेही वजारत चवाए तो विच उभर जहा मुल्क अमेरिका खिलाफ पैं सरजमीन इस्तेमाल थे नजन। इब्राहिम अजीजी अमेरिकी सदर साबित किया तो उसूलन तोड़े वायदे को एहतराम नो करें।

पाकिस्तान पंहिंजी सरज़मीन तां हर क़ीमत ते दहशतगर्दीअ खे ख़तम कंदो। असांजो पाड़ेसरी शिकस्त बाद प्रॉक्सीज़ जो सहारो वठी रहियो आहे। पाक फ़ौज दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे जे लाइ पुराज़म आहे। कराची में पाक बहरिया जी पासिंग आउट परेड खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान जी कोशिशुनि सां अमेरिका ऐं ईरान में इस्लामाबाद मुफ़ाहमत ते सहियूं थियूं। खिते में अमन जे क़याम जे लाइ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर जूं कोशिशूं बेसाराह जोगियूं हुयूं। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान पारां पाकिस्तान जो दौरो इस्लामाबाद जे अहम किरदार जो एतराफ़ हो। खिते में थींदड़ वॾनि तब्दीलियुनि जो असर बि जल्द ज़ाहिर थींदो। पाकिस्तान दुनिया में अमन जो अलमबरदार थी उभरियो आहे। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ॿिनि हंधनि ते ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिबि खारान ऐं मस्तोंग में 25 ऐं 26 जून ते ऑपरेशन कयो वियो। खारान में ऑपरेशन दौरान 3 दहशतगर्द ऐं मस्तोंग में 5 भारतीय हामी दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियल दहशतगर्द शहरनि ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि ते हमलनि में मुलविस हुआ। सिंध असेंबलीअ में बजट ते बहस दौरान सूबाई वज़ीरनि हुकूमती MPSG, MKM ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत ते तनक़ीद। सूबाई वज़ीर सैयद नासिर शाह चयो त समूरी दुनिया में मोटरवेज पोर्ट सिटीअ खां शुरू थींदा आहिनि। हैदराबाद कराची ऐं सखर हैदराबाद मोटरवे रुगो सिंध न पर समूरे मुल्क जी ज़रूरत आहे। MKM जे तलह अहमद चयो त सूबनि जी ॻाल्हि त मुल्की आईन में शामिल आहे, नए सूबे जी ॻाल्हि खे गदारी चवणु मुनासिब न आहे। MPA जमील सूमरो MKM ते जवाबी वार कंदे चयो त सिंध बम्बई बेकरी नाहे, जो बम्बई बेकरी जो केक न आहे जो तव्हांखे कराची कटे धार करे ॾियूं। असां बोरीबंद लाश ॾिठा आहिनि। औरंगी टाउन में बीबी कारकुननि खे वैन में साड़ियो वियो। लतीफ़ाबाद में बीबी कारकुननि खे क़तलु कयो वियो। अव्हां जा हक़ वफ़ाक़ खाई वियो ऐं अव्हां उन्हनि सां गॾु वेठा आहियो। मुंहिंजो घर साड़ींदव त पाण बि बची न सघंदव।

0: முற்றல் சம்மினார் ஞானத்த உணர்ந்து புத்திரன் பயன் பாணி பியர்ந்திலாய் நாய பக்தி பக்கன் மாணவன் மறந்தான்
1: असांजे बिन महिने में जा वठी पाणी न आहे मिलियो
2: सिंध जी मुख़्तलिफ़ शाखनि वाहन में पाणीअ जी शदीद खोट बरकरार आबादगार सरापा एहतजाज जमा शाह जे मीर रुकण शाख जे आबादगारनि जो पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ कोडलूं खणी एहतजाज कोरबा जी चोरबा शाख जे आबादगारनि जो पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो झोल जे शाहूबा जी पुछड़ी जे आबादगारनि जो पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ सांगड़ रोड ते धरणो अठहठि मोरी भरिसां जाम लिगारी शाख जी पुछड़ीअ में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज सन ऐं मांझनि में बि पाणी जी खोट ख़तम न थी आबादगारनि जो एहतजाज कराची जी अदालत में बीआरटी येलो लाइन करप्शन केस में गिरफ्तार जवाबदार जमीर अब्बासी जी जिस्मानी रिमांड में चइनि ॾींहनि जी वाध बुधणी दौरान अदालत जांच आफिसर खां सवाल कयो त जवाबदार जे बयान खे रिकॉर्ड हिसो बणायो वियो आहे या न जांच आफिसर ॿुधायो त जवाबदार जमीर अब्बासी जे बयान खे रिकॉर्ड हिसो बणायो वियो आहे बुधणी दौरान जवाबदार जमीर अब्बासी अदालत खे ॿुधायो त ख़बर नाहे छो संदसि फैमिली जा बैंक अकाउंट ऐं ॿिया तफ़सील तलब कया पिया वञनि मनसूबे जो कंसल्टेंट बि डेप्यूटी सेक्रेटरी जो भाउ आहे छा मां रोक रक़म खणी भॼी वियो आहियां एंटी करप्शन जो ज़ोर रुगो हथकड़ी लॻाइण ते आहे अदालत केस जी ॿुधणी 1 जुलाई ताईं मुलतवी करे छॾी कश्मीर भरिसां कारा इल्ज़ाम हेठि चाचे हथां भाइटी क़तल ॻोठ बख़्शो ख़ान डुमकीअ में जवाबदार अली जान भाइटी मुसमा तहमीना खे गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो वारसनि जो चवणु आहे त नियाणी खे जवाबदार अली जान बेगुनाह क़तल कयो आहे जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो वञे

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 583 569।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836
6: ऐं मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94

ਖੁਗਲਿਆ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਸੁਣਦੇ।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300002724। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202-4246-0100।
5: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुन जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़न जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-003-8556-9।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
6: न अदा।
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
8: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 0301-399-2836।
8: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-5-724।
10: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GA FM 94।

0: मेरा फैन। White H Beauty Cream 5 Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
2: मेरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

ज़िंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

कराची जे इलाइक़े गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 6 में मौसमियात वेझो धमाको ऐं शदीद फायरिंग पुलिस ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि जा अहलकार वाक़िए वारे हंधि पहुची विया। ईरान ऐं अमेरिका जा कुझु ॾींहनि जी जंगबंदी खां पोइ हिक ॿिए मथां हमला, ॿिन्ही मुल्कनि हिक ॿिए ते जंगबंदी जी भञकड़ी जो इल्ज़ाम लॻाए छॾियो। अमेरिकी सेंटकॉम मूजिबि ईरान जे ड्रोन ऐं मिज़ाइल स्टोरेज ऐं साहिली रिडार्स खे निशानो बणायो वियो आहे। अमेरिकी कार्रवाई ईरानी ड्रोन हमले जो ताक़तवर जवाब हो। ईरानी पासदारनि इनकलाब अमेरिकी हमला नाकाम बणाइण जी दावा करे छॾी। पासदारनि इनकलाब चयो आहे त ईरानी बहरिया ऐं फिज़ाया सैरक शहर ते अमेरिकी हमले खे नाकाम बणायो आहे। जवाब में ईरानी फ़ौज ख़िते में मौजूदु अमेरिकी अॾनि खे निशानो बणायो। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त अमेरिका जंगबंदीअ जी भञकड़ी कई, ईरान दिफ़ाई कार्रवायूं कयूं आहिनि। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस पारां तशदुद जो जवाब तशदुद ज़रिए ॾियण जी धमकी। जे डी वेंस चयो आहे त जंगबंदी वाइदे ते ईरान खे सहियूं करण बाद इज़त ॾिनी आहे। ईरान खे वाइदे ते इख़्तिलाफ़ आहिनि त सिधी रीति ॿुधाए सघनि हा। ईरान अमेरिकी हमलनि खे वाइदे जी भञकड़ी करारे छॾियो। ईरानी परॾेही वज़ारत चयो आहे त विच ओभर जा मुल्क अमेरिका ख़िलाफ़ पंहिंजी सरज़मीन इस्तेमाल थियण न ॾियनि। इब्राहिम अज़ीज़ी चयो त अमेरिकी सदर साबित कयो त हू उसूलनि तोड़े वाइदे जो एहतराम नथो करे।

बहरैन ईरानी ड्रोन हमलनि जी तस्दीक कंदे हमलनि खे ख़ुदमुख़्तियार इख़्तिलाफ़ ऐं वाइदे जी भञकड़ी करार ॾेई छॾियो। बहरैनी हुकूमत जारी कयल बयान में चयो आहे त ईरानी ड्रोन हमला ख़िते में जारी अमुन कोशिशुनि जे लाइ नुक़सानकार आहिनि। बहरैन खे पंहिंजी ख़ुदमुख़्तियारी इलाइक़ाई सलामती ऐं दिफ़ा जो हक़ हासिल आहे।

पाकिस्तान पंहिंजी सरज़मीन तां हर क़ीमत ते दहशतगर्दीअ खे ख़तम कंदो। असांजो पाड़ेसरी शिकस्त बाद प्रॉक्सीज जो सहारो वठी रहियो आहे। पाक फ़ौज दहशतगर्दी जे ख़ात्मे जे लाइ पुराज़म आहे। कराची में पाक बहरिया जी पासिंग आउट परेड खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तान जी कोशिशुनि सां अमेरिका ऐं ईरान में इस्लामाबाद मुफ़ाहमत ते सहियूं थियूं। ख़िते में अमन जे क़याम जे लाइ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जूं कोशिशूं बि साराह जोगियूं हुयूं। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान पारां पाकिस्तान जो दौरो इस्लामाबाद जे अहम किरदार जो एतिराफ़ हो। ख़िते में थींदड़ वॾियुनि तब्दीलियुनि जो असर बि जल्द ज़ाहिर थींदो। पाकिस्तान दुनिया में अमन जो अलमबरदार थी उभरियो आहे। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ॿिनि हंधनि ते ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिबि खारान ऐं मस्तोंग में 25 ऐं 26 जून ते ऑपरेशन कयो वियो। खारान में ऑपरेशन दौरान 3 दहशतगर्द ऐं मस्तोंग में 5 भारतीय हामी दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियल दहशतगर्द शहरनि ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि ते हमलनि में मुलविस हुआ। सभ खां वधीक सहाफ़ी सिंध में आज़ाद आहिनि। इन आज़ादी जो शिकार बि सिंध हुकूमत ई बणिजे थी। शहजील इनाम मेमन जो सिंध असेंबली में ख़िताब। शहजील इनाम मेमन चयो त माज़ीअ में पीपल्स पार्टी ख़िलाफ़ 32 मीडिया ट्रायल्स थिया। सिंध वाहिद सूबो आहे जंहिं जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल ठाहियो। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जे लाइ AI खां मदद वठी रहिया आहियूं। असां कंहिं बि सहाफ़ीअ ते पीका एक्ट तहत केस दाख़िल नाहे करायो। रिणपट में कमु करणु सवलो ऐं शहरनि में ॾुखियो हूंदो आहे। सिंध हुकूमत जे लाइ आसान हो त BRT ठाहे ई न हा, पर आवाम ख़ातिर मनसूबो शुरू कयो। ठेकेदार खे अॻवाट पैसा ॾियण ते BRT ऑफिसर ख़िलाफ़ एक्शन वरितो वियो। समूरनि सूबनि पंहिंजे हिसे मां बजट जो कुझु हिसो वफ़ाक खे ॾिनो। सिंध असेंबलीअ में बजट ते बहस दौरान सूबाई वज़ीर ऐं हुकूमती MPS जी MKM ऐं वफ़ाकी हुकूमत ते तनक़ीद। सूबाई वज़ीर सैयद आसिफ शाह चयो त समूरी दुनिया में मोटर वेज पोर्ट सिटी खां शुरू थींदा आहिनि। हैदराबाद कराची ऐं सखर हैदराबाद मोटर वे रुगो सिंध न पर समूरे मुल्क जी ज़रूरत आहे। MKM जे तलहा अहमद चयो त सूबनि जी ॻाल्हि त मुल्की आइन में शामिल आहे। नए सूबे जी ॻाल्हि खे गदारी चवणु मुनासिब न आहे। MPA जमील सुमरो MKM ते जवाबी वार कंदे चयो त सिंध बम्बई बेकरीअ जो केक न आहे जो तव्हांखे कराची कटे धार करे ॾियूं। असां बोरी बंद लाश ॾिठा आहिनि। औरंगी टाउन में बीबी कारकुननि खे वैन में साड़ियो वियो। लतीफ़ाबाद में बीबी कारकुननि खे क़त्लु कयो वियो। अवां जा हक़ वफ़ाक खाई वियो ऐं अवां उन्हनि सां गॾु वेठा आहियो। मुंहिंजो घर साड़ींदव त पाण बि बची न सघंदव।

0: मुल्क में कोकेन कराची न पर पेशावर लाहौर के हवाई अड्डन तक अचे थी। पिंकी हुए या बो को बास।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर राबते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
4: खुशखबरी हाँ अवे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन नहन एलर्जी कॉस्मेटिक वचड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज का इशा के नमाज तई हर आचर से सुबह जो 9 वगे का रात 8 वगे तई मरीजन जो इलाज कंदा एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर राबते 385-569-0300-33-8-5-6-9
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-51
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0303-85-569
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न थो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
3: न अदा।
5: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
4: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
3: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर। राब्ते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते अवां जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94
2: शिकायत जी सिस्टम से क्या तो वधिक तो आज जगह फरमाइश व सार कोशिश कभी तो पूरी करें

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जीएफएम 94।

0: पाकिस्तान पंहिंजी सरज़मीन तां हर क़ीमत ते दहशतगर्दीअ खे ख़तमु कंदो। असांजो पाड़ेसरी शिकस्त बाद प्रॉक्सीज़ जो सहारो वठी रहियो आहे। पाक फ़ौज दहशतगर्दी जे ख़ात्मे जे लाइ पुराज़म आहे। कराची में पाक बहरी अॾी पासिंग आउट परेड खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तान जी कोशिशुनि सां अमेरिका ऐं ईरान में इस्लामाबाद मुफ़ाहिम ते सहियूं थियूं। ख़िते में अमन जे क़याम जे लाइ फील्ड मार्शल आसिफ़ मुनीर जूं कोशिशूं बि साराह जोगियूं हुयूं। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान पारां पाकिस्तान जो दौरो इस्लामाबाद जे अहम किरदार जो एतराफ़ हो। ख़िते में थींदड़ वॾियुनि तब्दीलियुनि जो असर बि जल्द ज़ाहिर थींदो। पाकिस्तान दुनिया में अमन जो अलमबदार थी उभरियो आहे। अमेरिका ऐं ईरान जा कुझु ॾींहनि जी जंगबंदी खां पोइ हिक ॿिए मथां हमला। ॿिन्ही मुल्कनि हिक ॿिए ते जंगबंदी जी भनेकड़ी जो इल्ज़ाम बि लॻाए छॾियो। अमेरिकी सेंटकॉम मूजिब ईरान जे ड्रोन ऐं मिज़ाइल स्टोरेज ऐं साहिली रेडार्स खे निशानो बणायो वियो आहे। अमेरिकी कार्रवाई ईरानी ड्रोन हमले जो ताक़तवर जवाब हो। ईरानी पासदारनि इनकलाब पारां अमेरिकी हमला नाकाम बणाइण जी दावा। पासदारनि इनकलाब चयो त ईरानी बहरिया ऐं फिदाया सैरिक शहर ते अमेरिकी हमले खे नाकाम बणायो आहे। जवाब में ईरानी फ़ौज ख़िते में मौजूद अमेरिकी अॾनि खे निशानो बणायो आहे। ईरानी परी वधारे ते तर्जुमान चयो आहे त अमेरिका जंगबंदी जी भनेकड़ी कई, ईरान दिफ़ाई कार्रवाइयूं कयूं आहिनि। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस पारां तशद जो जवाब तशद ज़रिए ॾियण जी धमकी। जे डी वेंस चयो आहे त जंगबंदी मुआदे ते ईरान खे सयूं करण बाद इज़त ॾिनी आहे। ईरान खे मुआदे ते इख़्तिलाफ़ आहिनि त सिधी रीत ॿुधाए सघे थो। ईरान अमेरिकी हमलनि खे मुआदे जी भनेकड़ी करार ॾेई छॾियो। ईरानी परे वधारे चयो आहे त विच ओभर जा मुल्क ईरान ख़िलाफ़ पंहिंजी सरज़मीन इस्तेमाल थियण न ॾियनि। इब्राहिम अज़ीज़ चयो त अमेरिकी सदर साबित कयो त हू उसूलनि तोड़े मुआदे जो एहतराम नथो करे। बहरैन ईरानी ड्रोन हमलनि जी तस्दीक कंदे हमलनि खे ख़ुदमुख़्तारी ख़िलाफ़ ऐं मुआदे जी भञकड़ी करार ॾेई छॾियो। बहरैनी हुकूमत जारी कयल बयान में चयो आहे त ईरानी ड्रोन हमला ख़िते में जारी अमन कोशिशुनि जे लाइ नुक़सानकार आहिनि। बहरैन खे पंहिंजे ख़ुदमुख़्तारी इलाइक़े जी सलामती ऐं दिफ़ा जो हक़ हासिल आहे। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ॿिनि हंधनि ते ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द मारिजी विया। आई एस पी आर मूजिबि खारान ऐं मस्तोंग में 25 ऐं 26 जून ते ऑपरेशन कयो वियो। खारान में ऑपरेशन दौरान 3 दहशतगर्द ऐं मस्तोंग में 5 भारतीय हामी दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियल दहशतगर्द शहरनि ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि ते हमलनि में मुलविज़ हुआ। सभ खां वधीक सहाफ़ी सिंध में आज़ाद आहिनि। हिन आज़ादी जो शिकार बि सिंध हुकूमत ई बणिजे थी। शहजील इनाम मेमन जो सिंध असेंबली में ख़िताब। शहजील इनाम मेमन चयो त माज़ीअ में पीपल्स पार्टीअ ख़िलाफ़ बदतरीन मीडिया ट्रायल्स थिया। सिंध वाहिद सूबो आहे जंहिं जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल ठाहियो। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जे लाइ एआई खां मदद वठी रहिया आहियूं। असां कंहिं बि सहाफ़ी ते पीका एक्ट तहत केस दाख़िल नाहे करायो। रणपट में कम करणु सवलो ऐं शहरनि में ॾुखियो हूंदो आहे। सिंध हुकूमत लाइ आसान हो त बीआरटी ठाहे ई न हा, पर आवाम ख़ातिर मनसूबो शुरू कयो। ठेकेदार खे अॻुवाट पैसा ॾियण ते बीआरटी आफ़िसर ख़िलाफ़ एक्शन वरितो। समूरनि सूबनि पंहिंजे हिसे मां बजट जो कुझु हिसो वफ़ाक खे ॾिनो।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।